0: तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे कुरमाली लोकगीतों का कलाकार थे संतोष महतो और साथी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.3

0: सभी श्रोताओं को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। उम्मीद है श्रोताओं, इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि मौसम में परिवर्तन की वजह से कई तरह की बीमारियां होने के आसार रहते हैं, जैसे वायरल फीवर, इन्फेक्शन, उल्टी, दस्त, हैजा आदि के चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए अपने आसपास की सफाई जरूर करें। घर के पास गंदे पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इससे जीवाणु, कीटाणु और जानलेवा बैक्टीरिया पनपते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं। इसलिए साफ सफाई पर जरूर ध्यान दें और हमेशा साफ पानी और साफ भोजन ही लें, क्योंकि अगर हम दूषित पानी या भोजन ग्रहण करते हैं तो साथ में कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे शरीर में भोजन या पानी के साथ अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। और आज का चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। आज 17 जुलाई है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल 17 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, जो न्याय, उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक भावना का उत्सव है। यह 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आवश्यकता पर बल देने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा के रोम सम्मेलन में 120 देशों ने रोम संविधि का समर्थन किया, तथा रोम संविधि एक बाध्यकारी संधि बनी और उसी की वर्षगांठ को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य को समर्थन करना है। इसका उद्देश्य उन सभी लोगों को एकत्रित करना है जो न्याय तथा पीड़ित के अधिकारों का समर्थन करते हैं और उनके अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण विश्व में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते गंभीर अपराध तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाने का भी यह दिवस अवसर देता है। यह विश्व का पहला अस्थायी स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, जो उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है जिन्होंने अत्यंत गंभीर अपराध किए हों। इसमें 4 प्रमुख अपराधों को सम्मिलित किया गया है: नरसंहार, युद्ध संबंधी अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध तथा आक्रामकता से संबंधित अपराध हैं जो इन पर मुकदमा चलाया जाता है। 17 जुलाई उन सभी लोगों को एकजुट करता है जो न्याय का समर्थन करना चाहते हैं, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना चाहते हैं और उन अपराधों को रोकने में मदद करना चाहते हैं जो दुनिया की शांति, सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालते हैं। तो श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आप भी इस दिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय को बढ़ावा देंगे। तो श्रोताओं, अभी हम चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में। इस जानकारी के बाद आइए हम सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस

0: की नक्सलियों के परिवारजनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
1: नाम है रंगबला देवी, गाँव बारे हतो घर आये में हमारे घर बहुत दुख के बात होते बात हो जाए है।
2: नितुम बुरन सिंह तामसोय अनिता तामसोय भुरुपा सेना करना ऐसे दुकुर मिना यापा मेरे तपा मेरे वा बेटा मिटका
3: अन्या नितुम दो बुंबाई कोड़ा पटन नितुम दुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन नितुम कितमाई कोड़ा मैंने उड़ी ने बागिया तो किन्हें दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम कोई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
4: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम तेरी ना मिल आप ही लेते ना।
0: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जरूरी संदेश। इस संदेश के बाद आइए अब हम आनंद लेते हैं इस गीत से।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे सिलसिले फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये भेंट वार्ता।

0: आलिमा जी, फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार।
1: जोहार।
0: किसान, लेकिन समय की कमी के कारण हमारी पूरी बात इनसे नहीं हो पाई, इसलिए आज हमने इन्हें फिर से आमंत्रित किया है। बालेमा जी, आपने मुर्गी पालन में किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पर आपने पिछली मुलाकात में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। आज हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मुर्गी पालन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं।
1: मुर्गी पालन से तीन तरह का लाभ ले सकते हैं। एक है चूजे भी है, चूजे भी बेच भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, और अंडे है, अंडे भी खाते भी है और बेचते भी है।

0: लोग आके लेके भी जाते हैं, आधा या तो बाजार में भी बेच सकते हैं। और एक है मांस और ये काद, मुर्गी का जो काद है वो भी है, वो भी काद भी ले जाते हैं। गांव के अगल बगल वाले, दूसरा गांव वाले भी आके लेते हैं।
1: अच्छा
0: और ये मांस भी खाते भी है और परिवार वालों को खिलाते भी है।
1: जी, बहुत बढ़िया। तो मुर्गी के जो खाद आपने कहा, तो मुर्गी के खाद को आप कहाँ बेचते हैं?
0: ये जो बगान करते हैं, जो गांव में बगियानी सब करते हैं, वो लोग आके ले जाते हैं। वो लोग भी जानते हैं कि हम मुर्गी पालन करते हैं, तो वो
1: जी
0: लोग आके ले जाते हैं। वो हम एक जगह जमा करके रखते हैं, जो गड्ढा किए हैं और साइड साइड में मुर्गी ना पाला बोल के ईटे से थोड़ा सा बंद कर दिए हैं।
1: अच्छा।
0: और खुला खुला जगह रखे हैं ताकि बारिश का सीजन में उसमें कीड़ा मकोड़े ना आए, तो
1: अच्छा,
0: सूख भी जाएगा और गीला भी हो जाए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए गड्ढा रख के ईटा साइड साइड रख के उसमें डेली डालते, एक ही जगह जमा करते हैं। उससे भी पैदामन है, वो भी बेचते हैं और अंडे भी बेचते हैं और चूजे भी बेचते हैं। चूजे भी पालने वाला भी ले जाता है और ये 3-4 दिन वाला वो सब भी ले जाता है। 3-4 दिन निकल के 3-4 दिन हो जाता है, उतने ही में ले जाता है। और ज़्यादा चूजा भी रखना ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, 14-15 एक मुर्गी का होता है।
1: अच्छा,
0: तो
1: तो बहुत
0: हमें
1: बढ़िया।
0: नौ नौ या तो 8 ही रखते हैं, हर ये मुर्गी में 8-9 रखते हैं, बाकी बेच देते हैं,
1: अच्छा, बाकी आप चूजों को बेच देते हैं।
0: चूजे को भी बेच देते हैं।
1: अच्छा, तो अंडों को आप बाजार में ले जाते हैं या कि या फिर लोग आपके यहाँ आके ही ले जाते हैं?
0: बाजार भी ले जाते हैं, लोग जो जानते हैं वो लोग आके भी ले जाते हैं।
1: अच्छा, तो ये तो बहुत ही फायदेमंद वाला व्यवसाय है मुर्गी पालन। हम समझते हैं सभी को, जो भी किसान खेती बाड़ी करते हैं उन सभी को भी इस कार्य को जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो खेती बाड़ी के कार्य समाप्ति के बाद जो भी समय बचता है उस समय पर मुर्गी पालन करना बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि बालमत जी ने अभी कहा, मुर्गी पालन से 3 तरह से लाभ ले सकते हैं। एक तो हुए चूजे, मुर्गी के चूजों को हम बेच भी सकते हैं या तो फिर उनको पाल पोस के बड़ा भी कर सकते हैं। और फिर दूसरा है अंडा, और तीसरा है जो मुर्गी के जो खाद है उनको भी हम बेच सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये मुर्गी का जो व्यवसाय है काफ़ी फायदेमंद है। तो बालेमा जी, आप साल में लगभग कितना इनकम कर लेते हैं इस मुर्गी पालन से?
0: मुर्गी पालन से लगभग 60-70 पहुंच जाता है साल में,
1: अच्छा,
0: क्योंकि सब बेचते हैं, काद भी बेचते हैं, अंडों भी बेचते हैं और चूजे भी बेचते हैं। जो बड़ा होता है मुर्गी, बड़ा मुर्गा को भी बेचते हैं, तो घर आके भी ले जाते हैं या बाजार भी ले जाते हैं। जो पैसा की थोड़ा सा जरूरत पड़ जाता है तो नहीं आ रहे हैं कोई लेने के लिए, तो बाजार लेके भी बेच सकते हैं।
1: अच्छा,
0: और अंडा भी बहुत ज्यादा ज्यादा ही होता है, तो इसलिए अंडा भी बेचते हैं।
1: अच्छा, तो एक मुर्गी से लगभग कितने अंडे निकलते हैं?
0: ऐसे लगभग 15-16 आ जाता है।
1: अच्छा,
0: जो नया नया अंडा देते हैं मुर्गी है, तो वो
1: हाँ
0: लोग 9-10 देते हैं, और पुराना जो मुर्गी है जो 4-5 बार दे चुके हैं वो लोग तो 14-15 पहुंच जाता है, 20 भी पहुंच जाता है।
1: अच्छा,
0: तो 20 पहुंच जाएगा तो उतना तो 1 दिन 2 दिन अच्छा से रखेगा, और अंडा भी खराब हो जाता है और चूजे भी निकलने के बाद भी मर जाता है। इसलिए जो अंडा रखते हैं 9-10 रखते हैं,
1: बाद बाकी को
0: अगर
1: आप बेच देते
0: बाग
1: हैं?
0: बत्त की बेच देते हैं,
1: अच्छा,
0: और चूजे भी ज्यादा नहीं रखते हैं। अरे ये 9-8 रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, 6-7 1-2 नहीं भी रहेगा तो चलेगा, नहीं तो ज्यादा ये ज्यादा चूजा निकलता है तो उसमें ठंडा का सीजन में या तो बरसात में अच्छा से नहीं डक पाती है, उसमें मर जाते हैं आधा। फिर
1: अच्छा
0: भी ज्यादा रखोगे तब भी 5-6-7 उतना ही बड़ा होगा, तो
1: अच्छा
0: इसलिए 8-9 ही छोड़ देते हैं, उतने ही में 8 का 8 9 का 9 बड़ा हो जाते हैं अच्छा से ही।
1: अच्छा तो वो ज़्यादा अंडा रहने से मुर्गी अच्छा से सेक नहीं पाती
0: नहीं
1: है,
0: सेक पाती है।
1: तो इसलिए आप बाकी अंडों को आप निकाल के बेच देते हैं, और जितना रखना है जितना वो अच्छे से कर पाएगी उतने अंडों को आप उनके जगह पे रख देते
0: रख
1: हैं।
0: देते हैं हाँ।
1: जी, बहुत अच्छा। तो
0: और
1: बालेमा जी,
0: अंडा रखने के लिए भी हम ऐसे रखे हैं जैसे कि स्कूटी का मोटरसाइकिल का चक्का होता है,
1: अच्छा,
0: या तो टोटो का चक्का होता है जो चेंज करते हैं गैरेज से लेके, उसमें अच्छा से बोरा लपेट के उसमें अंडा दिलाते हैं, ताकि अंडा भी नहीं पलेगा और गर्म भी अच्छा से रहेगा। और मुर्गी बैठने

0: बटने जैसे वैसे साइज में रख के उसमें अंडा दिलाते हैं। चार पांच तो जो अंडा वाला है नीचे में रखेंगे तो बड़ा मुर्गी तोड़ देगा, इसलिए
1: अच्छा
0: ऊपर में भी चज्जा बना है और जो बड़ा बड़ा मुर्गा के लिए सीढ़ी बना है उसमें टंगाए हुए हैं। और बड़ा
1: अच्छा
0: मुर्गा ऊपर में बैठते हैं, नीचे वाला जो छोटा मोटा वो सब नीचे में रहते हैं। जो अंडा जो देते हैं जो ऊपर में दिलाते हैं, चज्जा बना है उसमें
1: अच्छा
0: चक्का लाइन लाइन से लगे हैं, जो चक्का में नहीं होता है तो ईटे गिरा करके उसमें ये अंडा दिलवाते हैं सबको
1: अच्छा
0: अलग
1: चारों
0: अलग
1: ओर ईटा का घेरा बनाते
0: घेरा
1: हैं,
0: बना के।
1: उस घेरे के अंदर में आप बोरे बिछा देते हैं जिससे कि वो उसमें अंडा दे सके और सेक सके।
0: सेक
1: बाले
0: सके।
1: माँ जी, आपने बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है। आप छज्जे के ऊपर भी आपने टायर लगा के उनके बैठने के लिए जगह बनाया है। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है आपका मुर्गी पालन का। तो बाले माँ जी, आपने अपना कीमती समय देते हुए बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी मुर्गी पालन से संबंधित, और इनसे क्या क्या लाभ होते हैं इस पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। जोहार।
0: जोहार।
2: श्रोताओं, अभी आप भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे मुर्गी पालन से लाभ विषय पर, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी बाले माँ बिरुआ। इस भेंट वार्ता के बाद आइए हम सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जरूरी संदेश। इस संदेश के बाद आइए अब हम कार्यक्रम के अंत में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तेरे नाम।

कार्यक्रम रसरंजन का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था तेरे नाम। और अब श्रोताओं अगला गीत आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। और अब श्रोताओं आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत। पंकज उधास और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है थानेदार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। और अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म ये है जलवा का ये गीत है।

और अब श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ों में फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का रस रंजन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
0: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी जी का।
0: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
1: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
0: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
1: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
0: श्रोताओं हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
1: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
0: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
1: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
0: जी,
1: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
0: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओ, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
0: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा

0: उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
1: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
0: कैसे बना हिमालय।
1: आज रिद्धि,
0: नव्या
1: और रिदित
0: सब बहुत खुश है
1: क्योंकि उनका परिवार
0: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
2: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
3: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
2: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
3: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
2: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
3: बहुत मजा आएगा।
1: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
0: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
1: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
0: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
1: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
0: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
1: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
1: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको, मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
1: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
1: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा

0: में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
2: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, तेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि तेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ। तिब्बती लोग इसे चोमो लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेव।

अरोरा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। हाँ, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
4: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
3: बोलो
4: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
3: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
4: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
3: अरे नहीं नहीं,
4: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
4: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
3: अच्छा।
4: राजम उनके साथ था, अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
3: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
4: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
3: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
4: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
3: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
4: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
3: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
4: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
3: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
3: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में।
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गईं।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:29 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।

0: से करेंगे सबका स्वागत स्वागत।
1: अब हमने अपने श्रोताओं का दिल से स्वागत तो कर लिया, अब बारी है सुविचार की। तो कार्यक्रम के शुरुआत करते हैं सुविचार के साथ। अब पता है कि कठिन परिस्थितियों में सुविचार हमें धैर्य, साहस और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसलिए हमें सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और दया जैसे गुणों को ना हमेशा धारण करना चाहिए।
2: और कहते हैं ना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा और अच्छे लोगों की संगति विचारों को श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए हमें नकारात्मक सोच से दूर रहकर हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा चरित्र और भविष्य बनता है।
1: इसलिए हमें ईश्वर से हमेशा ये शक्ति मांगनी चाहिए कि ईश्वर हमें हमेशा सही दिशा पर रखे।
2: बिल्कुल।

0: कितना खूबसूरत मोटिवेशनल गीत है ना आभा। क्या
1: हाँ
0: खूब कहा है किसी ने कि कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छांव, कुछ
1: और
0: खोकर कुछ पाने की आशा। बिल्कुल।
1: शायद यही है जीवन की परिभाषा।
0: तो आभा आज के अंक में होगी ढेर ढेरों विषय पर बातें, फिलहाल बातें
1: मौसम
0: मौसम
1: की।
0: की। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात व बारिश हो रही है।
1: और आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 17 जुलाई को खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और 18 जुलाई को रांची सहित 10 जिलों जैसे लातेहार, चतरा, गुमला, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, लोहरदगा में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।
0: तो बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी हुआ पड़ा है, तो इसकी वजह से अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो कम से कम छाता या फिर रेनकोट साथ में जरूर रखें।
1: और 20 जुलाई तक जो है आसमान में बादल भी छाए रहेंगे, मिला जुला कर मौसम जो है सुहावना रहने का मतलब उम्मीद है।
0: हाँ, कभी धूप कभी छांव वाला मौसम है,
1: हाँ
0: तो याद रखें कि छाता जरूर लेके जाएं। अगर धूप हो तब भी आप बच सकते हैं, और बारिश हो तो आप बिल्कुल बच ही सकते हैं।

0: अब हम भी कार्यक्रम में आगे चलते हैं और देखो, जैसे कि रिमझिम रुमझुम बारिश का मौसम है जो कि बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये नमी भरा मौसम हमारी त्वचा स्किन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे बरसात के दौरान होने वाली स्किन एलर्जी के विषय में।
1: अक्सर सवाल आता है कि बारिश में ही त्वचा में खुजली, दाने या लाल चकते क्यों पड़ते हैं। तो हम आपको बता दें, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हवा में मौजूद अधिक नमी, जो वातावरण में उमस बढ़ाती है और हमारी त्वचा के रोम छिद्र को बंद कर जाती है, और जिससे कि हमारा जो पसीना है वो ठीक से सूख नहीं पाता, और यही नमी फंगस और बैक्टीरिया के पनपने का मुख्य केंद्र बन जाती है, जो स्किन इन्फेक्शन का कारण बनती है।
0: तो इससे बचाव कैसे करें, तो आइए कुछ आसान और कारगर नुस्खे हम जानते हैं। और साफ सफाई सबसे जरूरी बात है आभा, और बाहर से आने के बाद ना अपनी त्वचा को एंटीबैक्टीरियल साबुन या गुनगुने पानी से अच्छी तरह साफ करें और नमी को त्वचा पर टिकने ना दें।
1: और इस मौसम में कपड़ों का चुनाव जो है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इस मौसम में सूती और ढीले ढाले कपड़े ही पहने, सिंथेटिक कपड़े पसीना सोखते नहीं है जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।
0: और बारिश के मौसम में कपड़े सही से सूखते नहीं हैं, और वो जैसे कि तुमने भी बताया कि गीले व सीलन भरे कपड़े पहनकर स्किन एलर्जी सबसे बड़ी वजह है। तो हमेशा अच्छी तरह सूखे हुए और धूप में सुखाए हुए कपड़े ही पहने। और होता है ना, कभी कभी काफी लगातार 2-3 दिनों तक बारिश होती है तो कपड़े सही ढंग से सूख नहीं पाते। तो अगर आप इसमें आप एक उपाय ये कर सकते हैं कि कपड़े आप पहनने से पहले ना उसे इस्त्री जरूर करें, तो इससे ना काफी अच्छे तरीके से वो सूख जाएंगे।
1: हाँ, और कोशिश करें कि अपनी त्वचा को सूखा रखें। अगर आपको पसीना ज्यादा आता है तो बीच बीच में उसे साफ करते रहें। पैरों की उंगलियों के बीच की जगह को सूखा रखना ना भूलें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन अक्सर वहीं से शुरू होता है। और याद रखिए, आपकी त्वचा आपकी सेहत का आईना है। थोड़ा सा ध्यान और सतर्कता बरतकर आप इस बारिश के मौसम को खुशनुमा और सुरक्षित बना सकते हैं।
0: तो जब बात हो रही है बारिश की, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: कार्यक्रम जो हा रांची में फिर आपसे मुलाकात होगी इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का कार्यक्रम जोहार रांची में। तो दोस्तों, समय के पहिए ने आज के दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ महत्वपूर्ण लकीरें खींची हैं। तो आइए आज के दिन घटित कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर एक नजर डालते हैं।
2: तो आपको बता दें, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि विश्व भर में न्याय की स्थापना और शांति बनाए रखना मानवता के लिए कितना आवश्यक है।
1: और आज के दिन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, साल 1975 में आज के दिन ही अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के सोयुज अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की कक्षा में एक दूसरे से मिलकर इतिहास रचा था, और ये अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में दो महाशक्तियों के बीच सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण था।
2: और इसी के साथ आज का दिन हमें कुछ कड़वे अनुभवों को भी याद दिलाता है। साल 1944 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के पोर्ट शिकागो में एक भयावह समुद्री आपदा हुई थी, जो इतिहास में एक बड़ी दुर्घटना के रूप में दर्ज है। और वहीं साल 2014 में आज ही के दिन मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH17 के साथ हुई दुखद घटना ने भी पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि इतिहास हमें बताता है कि हर दिन केवल एक तारीख नहीं होती, बल्कि मानवता के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है।

0: जुहा जाची में हम बातें कर रहे हैं इतिहास की, तो एक नजर उन हस्तियों पर डालते हैं जो आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखे थे।
1: सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की वर्तमान महारानी महारानी कैमिला की, जिनका जन्म 1947 में आज के दिन ही हुआ था। वे अपनी सादगी और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। और अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत की ओर। आज के दिन 1952 में जन्म हुआ था हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता डेविड हैसेल हॉफ का, जो बेवॉच और नाइट राइडर जैसे टीवी शो से पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने वाले डेविड आज भी एक ग्लोबल आइकॉन बने हुए हैं।
0: और आज इतिहास की एक और बड़ी हस्ती है, दिग्गज कनाडाई अभिनेता डोनाल्ड सदरलैंड का जन्म हुआ था। 1935 में जन्मे सदरलैंड ने हंगर गेम्स और MASH जैसी क्लासिकल फिल्मों के जरिए अभिनय की एक मिसाल पेश की है। आज भी उनका काम कलाकारों की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।
1: और गणित की दुनिया में उस चमकते सितारे का जिक्र करते हैं जिन्हें दुनिया गणित का मोजार्ट कहते हैं। 1975 में आज के दिन ही जन्मे असाधारण बुद्धिमता वाले टेरेंस टाउ आज विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। और दोस्तों, आपको पता है क्या उनका IQ 220 ये बताता है कि मानवीय क्षमता की कोई सीमा नहीं होती।
0: तो और बात करते हैं एक और भारतीय सिनेमा की, जो आज का दिन विशेष है अभिनेत्री जरीना वहाब के लिए। 1959 में जन्मी जरीना ने चितचोर से लेकर माय नेम इज खान तक अपनी बेहतरीन अदायगी से दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया है। आज हमें उनके जन्मदिन पर उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये सभी व्यक्तित्व अपने अपने क्षेत्रों में शिखर तक पहुंचे हैं। और सुनते हैं जरीना वहाब पे फिल्माया गया ये गीत।
1: जब बात चित्तौड़ की हो तो ये गाना हम कैसे भूल सकते हैं। अब
0: बिल्कुल

0: समय की धारा में जहाँ कुछ नाम जन्म लेकर इतिहास रचते हैं, वहीं कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्यों से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज 17 जुलाई है और इतिहास के इन पन्नों में आज का दिन उन दिग्गज हस्तियों को याद करने का है जो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है।
1: दोस्तों, आज ही के दिन 1970 में आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले स्कॉटिश दार्शनिक एडम स्मिथ ने दुनिया से विदा ली थी और उनकी कृति द वेल्थ ऑफ नेशंस आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था और नीति निर्धारण का आधार मानी जाती है।
0: और संगीत की दुनिया के लिए आज का दिन एक अपूर्णीय क्षति का दिन है। 1967 में आज ही के दिन महान अमेरिकी जैज सैक्सोफोन वादक जॉन कोल्ट्रेन का निधन हुआ था। उन्होंने अपने संगीत से जैज की परिभाषा को एक नया आयाम दिया था।
1: और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गुजरात की मिट्टी के प्रति समर्पित इंदूलाल याग्निक जी को

0: जी, आज हम नमन करते हैं। 17 जुलाई 1972 को उनका निधन हुआ था और महा गुजरात आंदोलन के प्रणेता के रूप में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
1: और खेल जगत में अपनी रफ्तार से पहचान बनाने वाले फॉर्मूला वन ड्राइवर जूलस बियांची का निधन भी 2015 में आज ही के दिन हुआ था। उनकी जज्बे को खेल प्रेमी आज भी सलाम करते हैं।
0: और हिंदी और गुजरात सिनेमा व टेलीविजन जगत की जानी मानी अभिनेत्री रीता भादुड़ी को हम आज याद करते हैं, जिनका निधन 2018 में आज के दिन ही हुआ था। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से अनगिनत दर्शकों के दिल तक जगह बनाई थी।
1: तो ये वे महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में इतिहास रचा था। आज हम इन सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: लोग चले जाते हैं लेकिन दिल में हमेशा बनी रहती है उनकी यादें।

0: गणपति
1: नमस्कार
0: जोहार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है रथ यात्रा 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन एवं वाचन है मनोज कुमार का, प्रस्तुति प्रभु शरण के।
2: नमस्कार जोहार। हर साल की तरह इस वर्ष भी रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष 16 जुलाई 2026 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक यह उत्सव मनाया जा रहा है। देश दुनिया में इस महोत्सव को लेकर पहले से तैयारी की जा रही थी। झारखंड की राजधानी रांची में दो स्थानों पर यह महोत्सव मनाया जाता है। पहला रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर में, जो कि बड़कागढ़ के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरा रातू में राजागढ़ में, जिसे छोटकागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान किया जाता है, यानी भगवान का श्रृंगार किया जाता है एवं आँख का श्रृंगार मंत्र द्वारा किया जाता है। इस नेत्रदान के बारे में बताते हुए

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके पसंद। कार्यक्रम का अगला नगमा हम लेकर हाजिर हुए हैं फिल्म मैंने प्यार किया से, जिसे सुनने के लिए हमें खत लिखा है भाटा पारदंत तेरी से हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं ने। आप है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर।

दोस्तों, आप भी अगर कार्यक्रम आपकी पसंद में अपना पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं तो देर ना कीजिए, फटाफट उठाइए पोस्टकार्ड और हमें लिख भेजिए आपके पसंदीदा गाने का नाम। हमारा पता है आपके पसंद द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रातू रोड, रांची, झारखंड, पिन संख्या 834001।

दोस्तों, फिल्म MS धोनी के इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफर यही समाप्त हुआ। आप अपनी रेडियो हम सफर मान्यता को आज्ञा दीजिए। चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अतः आप अपने समय का हर एक क्षण बहुत सोच समझकर उपयोग करें। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। सूत्रधार है शुभाषिनी शिल्पी और प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

0: नमस्कार सखियों, सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना के साथ आप सभी सखियों का स्वागत करती है आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी। साथ ही आपकी एक और रेडियो सखी शिल्पी भी आप सभी श्रोता बहनों का तहे दिल से स्वागत करती है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। नमस्कार बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां इंटरनेट ने हमारे जीवन को बेहद आसान बना दिया है। यहां तक कि हमारा और आपका रोज का मिलना भी आसान हो गया है।
1: बिल्कुल सही, और हम महिलाएं भी डिजिटल क्रांति का में हम फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि राशन घर का मंगाना हो, बच्चों के स्कूल का फी भरनी हो, या घर बैठे छोटा मोटा कोई भी बिजनेस चलाना हो, सारे काम हम बस एक स्मार्टफोन की एक क्लिक पर घर बैठे ही कर लेते हैं सुहासनी, है ना?
0: हाँ शिल्पी, बिल्कुल सही कह रही हो। और सखियों, तकनीक ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन इसी तकनीक की आड़ में एक नया खतरा हमारे सामने आ गया है। वह खतरा है साइबर क्राइम। महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर क्राइम एक गंभीर अपराधों में से एक है। बहनों,
1: इन अपराधों में ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, ब्लैकमेल,

0: महिलाओं दफ्तर में काम करती हैं, बहुत जगह काम करती हैं, जहां कंप्यूटर पर भी बहुत सारे काम वो करती हैं, घरों में भी लैपटॉप का उपयोग करती हैं, ऐसे में बॉटलनेक का खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यह एक ऐसा नेटवर्क है बहनों, जिसे हैकर्स हैक कर लेते हैं और खुद वो उसे कंट्रोल करते हैं।
1: बिल्कुल सही। और इसी तरह बहनों, फिशिंग भी है जिसके जरिए डेटा चुरा लिया जाता है। इस तरह के बहुत से ऐसे माध्यम हैं बहनों, जिसके द्वारा महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम हो रहे हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है हम खुद जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। महिलाओं को अपनी और परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर अपलोड कर भी रहे हैं तो प्राइवेसी रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और अपना प्रोफाइल लॉक रखें बहनों हमेशा, और किसी अजनबी की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको एक्सेप्ट ना करें। अपना पासवर्ड मजबूत रखें, और हमेशा कहा जाता है कि ओटीपी किसी से भी आप शेयर ना करें। अनजान ऐप को स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन ना दें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले आप URL चेक कर लें बहनों।
1: हाँ, अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। यहाँ आपको 24/7 हिंदी में मदद मिलेगी। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत भी आप दर्ज कर सकती हैं।
0: बिल्कुल सुभाषनी, बहुत अच्छी बात तुमने बताई। इसके अलावा नजदीकी साइबर थाना या महिला थाना जाकर FIR भी बहनें हमारी कर सकती हैं। चैट कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ईमेल लिंक सब सेव कर आप रख लें। फोन रिसेट या चैट डिलीट ना करें भूल करके भी, क्योंकि इससे बहुत सारे जो सबूत होते हैं आपके वो मिट जाते हैं।
1: हाँ। और सखियों, घबराए नहीं, हमेशा याद रखें कि आप अकेली नहीं हैं, कानून आपके साथ है।
0: बिल्कुल, और कानून के साथ साथ हम बहनें भी बहनों के साथ हैं, क्यों सुभाषनी, है ना।
1: हम आए दिन बहनों को अच्छी अच्छी इसी तरह की जानकारियां साझा करते रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो शिल्पी, जानकारियां तो हो गई, हमने बहनों से बातें की, अब बहनों के साथ एक खूबसूरत गीत सुनने का वक्त हो चला है।
0: बिल्कुल,

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
5: और बहनों, अब वक्त है हमारे आज के मेहमान से मिलने का। तो बहनों, आज हमारे चर्चा का विषय है घरेलू हिंसा के प्रति हमारी जागरूकता एवं संबंधित कानून। इसी विषय पर हमारी सखी शिल्पी चर्चा कर रही है शेखर वर्मा से। आइए सुनते हैं उनसे बातचीत।
6: भारत में हर रोज घरेलू हिंसा के ढेरों मामले सामने देखने और सुनने को मिल रहे हैं। महिलाएं चुपचाप सहती रहती हैं, क्योंकि कई महिलाओं को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि इसके खिलाफ अधिकार भी बनाए गए हैं। बहनों, यदि आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं, चाहे पति से हो या ससुराल जन से या अन्य परिजन परेशान करते हैं, तो बिल्कुल घबराए नहीं, ना ही कोई गलत कदम उठाएं। आप कानून का सहारा लें, क्योंकि महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं, जहां आपको न्याय मिलेगा। बस जरूरत है जागरूक होने की। आज इसी विषय पर हमने बात की है अधिवक्ता शेखर वर्मा से। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार।
7: नमस्कार शिल्पी जी।
6: शेखर जी, सबसे पहले बताइए कि घरेलू हिंसा क्या होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है?
7: देखिए शिल्पी जी, आज के समय में घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गया है
6: जी।
7: घरेलू हिंसा यानी घर के अंदर होने वाली हिंसा, चाहे किसी भी महिला के साथ हो रहे हो, माँ हो, बहन हो, भाभी या पड़ोसी महिला के प्रति किसी भी प्रकार का व्यवहार होता है, चाहे शारीरिक हो सकता है या मानसिक रूप से भी प्रभावित प्रदान किया जाता है या भावनात्मक तौर पर भी परेशान किया जाता है। इतना ही नहीं, कई महिला को आर्थिक रूप और मौखिक रूप से भी दबाया जाता है
6: जी।
7: तो यह भी हिंसा का ही रूप है। महिला को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं दी जाती है, अपने मन से कुछ खर्च करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, बातों बातों में उलाहना देता है, चाहे वो मायके से हो या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर, सब इसी हिंसा के अंतर्गत आते हैं
6: जी।
7: घर परिवार की देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी है
6: जी जी,
7: पर खुद के लिए निर्णय लेने का हक नहीं है, अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, ये सब घरेलू हिंसा के ही तो अंतर्गत आता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर पीड़िता को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है तो वो डरे नहीं, उनके साथ हो रही हिंसा की शिकायत परिवार के दूसरे सदस्य भी कर सकते हैं,
6: यानी अन्य व्यक्ति भी कर सकता है।
7: हाँ, आपने सही कहा। या मोहल्ले में किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो उसकी सूचना करें। घरेलू हिंसा बहुत तरह से होता है, जैसे भावना को चोट पहुंचाना
6: जी,
7: बात बात पर ताना मारना, या बच्चा नहीं होने पर। ऐसा होता है कि आजकल लोग शादी के बाद घर के लोग सोचते हैं कि इसे 1-2 साल में बच्चा हो जाना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो उसको लेकर भी लोग उस महिला को ताना देते हैं
6: जी,
7: या किसी बच्चे से दूर रखते हैं, किसी रिश्तेदार के सामने लज्जित करते हैं कि वो नौकरी नहीं कर रही है, ऐसी बातें भाषा बोलते हैं कि उसको चोट पहुंचती है
6: मानसिक रूप से।
7: हाँ, तो ये गलत है, क्योंकि इससे मानसिक तौर पर आहत होती है महिलाएं
6: जी जी।
7: कहीं ऐसा भी देखा गया है कि अच्छी घर से लड़की है उसे आर्थिक रूप से आजादी नहीं है, या जो कामकाजी भी है उनके पैसों पर नजर रखा जाता है
6: जी, ऐसा देखा जाता है अक्सर।
7: हाँ, किसी के सहमति से ही खरीद बिक्री करना, अपनी इच्छाओं का दमन कराना भी तो ठेस पहुंचाता है उनको। देखिए, आज और मामला आने लगा है, आज और भी मामला आने लगा है जिसे हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में रहते हैं। तकनीकी का जमाना है, महिला को सोशल मीडिया से दूर रखना या मैसेज कुछ उसके मैसेज को चेक करना, उसके उसे पढ़ना, फ़ोन पर निगरानी रखना, बातचीत को टेप करना आदि सारे हिंसा के घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं
6: जी।
7: ससुराल वाले बात बात पर गाली गलौज करते हैं, चाहे दहेज के लिए ताना देते हैं, सभी घरेलू हिंसा ये सब सारे घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। भारत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 5 के अनुसार कोई व्यक्ति जो कि मेजर हो गया हो, 18 वर्ष से ज़्यादा उसकी उम्र हो गई हो, अगर आपको प्रताड़ित करता है या अब्यूज़ करता है तो उसकी शिकायत करें, इसके आप उसकी शिकायत दूसरों से करें
6: जी। बहुत अच्छी अपनी बात कही। अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी उसे अपनी शिकायत को कहाँ दर्ज करानी चाहिए, ये बताएं हमें।
7: सबसे पहले तो यह घरेलू मामला होता है, अगर बात से

0: बहनों, आप अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे शेखर वर्मा। विषय था घरेलू हिंसा के प्रति हमारी जागरूकता एवं संबंधित कानून। इनसे बातें कर रही थी शिल्पी। और शिल्पी, इस जानकारी के बाद जो बातचीत हुई उनसे, इसके बाद हम बहनों से थोड़ी सी जानकारी भी साझा कर लेते हैं।
1: बिल्कुल सुभाषनी, हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, है ना? तो बहनों, अधिकार और कर्तव्य राष्ट्र या किसी संगठन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ओर अधिकार किसी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर देते हैं, जबकि दूसरी ओर कर्तव्य विकास में एक भूमिका निभाने के लिए एक व्यक्ति को प्रेरित करते हैं।
0: बिल्कुल, एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में हम सभी को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है बहनों, लेकिन इन अधिकारों के अलावा हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं।
1: बहनों, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
0: और ये अधिकार हमारी बुनियादी स्वतंत्रता है जो हर भारतीय नागरिक को जन्म से मिलती है। इन्हें संविधान के भाग 3 में दिया गया है बहनों, और इन्हें मौलिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संसद भी इसे आसानी से छीन नहीं सकती।
1: बिल्कुल बहनों, और अधिकार हमें बताते हैं कि क्या मिलेगा। इसी प्रकार कर्तव्य में ये याद दिलाते हैं कि हमें क्या देना है। कुछ जरूरी कर्तव्य के बारे में अगर हम बात करें तो वो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
0: इसके अलावा और भी हमारे कर्तव्य हैं बहनों, जैसे कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच और मानवता और सुधार की भावना रखना, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है बहनों।
1: बहनों, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौलिक अधिकार हमें गरिमा से जीने की गारंटी देते हैं और मौलिक कर्तव्य हमें अच्छा नागरिक बनाते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र तभी बनता है जब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार भी हों।
0: बिल्कुल, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं ताकि हम सिर उठाकर जी सके, और कर्तव्य दिए हैं ताकि हम मिलकर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सुभाषनी। और अपनी एक और जिम्मेदारी हम निभाते हैं कि भाई बहनों को ले चलते हैं संगीत की दुनिया में।

0: भाई बहुत ही खूबसूरत गीत। और इसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ चूंकि मौसम है बरसात का तो उसके बारे में बातें करते हैं। बहनों, बरसात का मौसम हरियाली, ठंडी और बारिश की फुहारें लेकर आता है। यह मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही अपने साथ कई बीमारियों और दुर्घटनाओं को भी लेकर आता है। इसलिए इस मौसम का आनंद तभी लें जब हम थोड़ी सी सावधानी के साथ चलें। तो भाई जानते हैं सुभाषिनी के साथ क्या क्या क्या हम सावधानी अपने बहनों को बताने वाले हैं।
1: तो बहनों, स्वास्थ्य संबंधी कुछ सावधानियां आप जरूर रखें, जैसे कि हमेशा घर का बना ताज़ा खाना खाएं और बाहर का जो स्ट्रीट फूड होता है या जंक फूड होता है, कटी हुई फल सब्जियां जो रखी रहती हैं उनसे बचें, क्योंकि इन पर बैक्टीरिया आसानी से पनपते हैं।
0: बिल्कुल। और बहनों, सबसे बड़ी बात है कि हम पानी को हमेशा फिल्टर में पिए, और अगर घर में कहीं पे फिल्टर न हो तो आप उसे उबाल कर सूती कपड़े में छान कर ठंडे करके पिए, ताकि डायरिया, पीलिया जैसी जो भी बीमारी पानी के कारण होता है वो आप न हो पाए और आप उससे बच पाए।
1: हाँ, और बहुत जरूरी है मच्छरों से बचाव।
0: हाँ,
1: कूलर, गमलों या घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, ताकि डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ना पनपे। और सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें,
0: क्योंकि बहुत ये सेफ मैंने आइडिया है।
1: हाँ,
0: कि मच्छर अगर आपके घर में है भी तो मच्छरदानी में आप सोइएगा तो नहीं होगा। और सबसे एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर बच्चे आपके घर में छोटे हैं बहनों, बाहर वो खेलते हैं तो उन्हें खेलने से पहले फूल आस्तीन के आप कपड़े पहनाएं, सूती और ढीले ढाले।
1: बिल्कुल। और बरसात में भीगने के बाद तुरंत साफ पानी से नहा ले और तुरंत अपने शरीर को सुखा ले और सूखे कपड़े पहने, और कपड़े अगर या फिर शरीर भीगा हो या कपड़े भीगे हो तो उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है।
0: और सुभाषिनी, कई बार हम देखते हैं कि बारिश भले ही होती है लेकिन बीच बीच में धूप भी खिले खिले निकल जाते हैं, तो घर में जितने भी तकिए हैं या आपके टॉवेल हैं तो उसको बहनों आप धूप में जरूर 1 घंटा सुखा लें।
1: और बारिश के दौरान सड़कों पर या घर में भी जो बाहर पक्का होता है उसमें फिसलन बढ़ जाती है, तो वाहन चलाते समय या चलते समय सावधानी बरतें, और जो भी वाहन का, स्कूटी का प्रयोग महिलाएं करती हैं तो हेडलाइट अपना चालू रखें अगर बहुत बारिश हो रही है तो।
0: बिल्कुल। और छोटी छोटी इन सब बातों का बहनें ख्याल रखेंगी तो निश्चित है कि बरसात में वो संभल पाएंगी, उनका परिवार अच्छा रहेगा और खुद भी वो स्वस्थ रहेंगी। तो बहनों, ऐसी ही जानकारी हम हर रोज लेके आपके लिए आते हैं, और अब हमारे कार्यक्रम का जो समय सीमा है वो संपन्न होती है।
1: और चलते चलते बहनों, आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और अब आपके सखी शिल्पी और सुभाषिनी आपसे विदा लेती है इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे
0: जल्द आपसे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी
3: महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी यही संपन्न हुआ। सूत्रधार थी सुभाषिनी एवं शिल्पी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। दोस्तों, इश्क की खामोशी, हवा में घुली हुई कशिश और दिल में दबी कोई पुरानी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी मोनिता और हाजिर हूं फिल्म संगीत के साथ।

0: फिल्म संगीत जारी रहेगा संतराल के बाद भी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: दोस्तों पुनः स्वागत है आपका फिल्म संगीत के इस सफर में जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से. दोस्तों मोहब्बत ये लफ्ज़ सुनने में जितना आसान है जीने में उतना ही है गहरा. कोई इसे इबादत कहता है तो कोई इसे चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है और किसी के लिए ये वो खामोशी है जो ताउम्र सोने नहीं देती.

इश्क सिर्फ दो दिलों का मिलना नहीं, इश्क तो वो एहसास है जो आपको खुद से मिलवाता है। वो जो पहली मुलाकात की घबराहट, वो नाम सुनते ही दिल का धड़कना और वो घंटों तक फ़ोन पर बातें करना, ये सब जिंदगी के सबसे खूबसूरत पूंजी है। भले ही वो इश्क आज आपके पास हो या ना हो, पर उसकी यादें हमेशा आपके पास रहती हैं।

अक्सर लोग पूछते हैं कि इश्क क्या है, तो मैं ये कहती हूँ कि इश्क अधूरा रह जाए तो शायरी बन जाती है और मुकम्मल हो जाए तो सुकून। पर जो भी हो, मोहब्बत करने वाले कभी हारते नहीं, या तो वो पा लेते हैं या फिर वो खुद को पा लेते हैं।

अगला गाना उन तमाम धड़कनों के नाम जो किसी का नाम सुनकर तेज हो जाती हैं। तो दोस्तों कानों में हेडफोन लगाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए और खो जाइए मोहब्बत के इस दुनिया में।

0: मुझे सोचूं तो फूट जाता।
1: इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर यहीं संपन्न हुआ। आप अपने रेडियो हम सफर मोनिता को आज्ञा दीजिए। अब से कुछ ही देर में क्रमशः आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्य

0: के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind a special place in India's history.
2: Aaj Bharatiya Rail ne bhi 21vi sadi ki is technology mein ek bada step liya hai. आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that this milestone is the result of a strong national resolve to develop indigenous hydrogen technology. Mr. Vaishnav emphasized that the train is completely environment-friendly with no requirement for diesel or petrol.
3: इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रक इन कार्स, इन स्मॉल फिशिंग बोट्स, इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज माइनिंग ट्रक्स, माइनिंग इक्विपमेंट, इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस आल्सो। सो नाउ वी कैन बेसिकली यूज दिस टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल सेक्टर्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीबॉडी।
1: Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. The Directorate General of Maritime Administration has directed ship owners, ship managers and recruitment and placement service license companies to avoid deploying Indian seafarers on vessels undertaking voyages through the Strait of Hormuz until further orders. The Maritime Administration

0: has issued an advisory on precautionary measures for the safety and security of Indian seafarers in view of the heightened security situation in the Gulf region. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the Parliament this Sunday, ahead of the upcoming monsoon session of Parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. The Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested five persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shera, Mohammed Ayub Kariwala, Mohammed Palanpuri alias Khali Ayub Sansara, Shafia Rais Mukhti and Mohammed Hassan Kardia. The European Union has expressed serious concern over the human rights situation in Pakistan. It has warned that Pakistan's continued access to trade benefits under the Generalized Scheme of Preferences Plus or GSP Plus will depend on its compliance with international commitments under the revised GSP framework from 2027. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्वच्छ और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन अब सदर अस्पतालों से होगा। नई एम्बुलेंस की खरीद तक सिविल सर्जनों की देखरेख में चलेगी व्यवस्था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम किए घोषित। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल। नामकुम भूमि हेरफेर मामले में एसीबी ने शुरू की प्रारंभिक जांच। हाईकोर्ट को दी जानकारी। राज्य सरकार ने दी पीई की मंजूरी। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन अब राज्य के सदर अस्पतालों से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई एम्बुलेंस की खरीद तक यह सेवा संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों की देखरेख में संचालित होगी। नई एम्बुलेंस की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
3: वैसे एजेंसी पर हम FIR दर्ज करने जा रहे हैं। आप जब काम नहीं कर सकते तो काम लिए क्यों? तक नई एजेंसी नहीं आ जाती है। जितना भी हमारा एम्बुलेंस है सदर हॉस्पिटल में आप जमा कर दो। हम 21 तारीख को आपात बैठक हम कर रहे हैं। उस बैठक में हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 108 की जितनी भी खराब एम्बुलेंस हो या अच्छा एम्बुलेंस वो सदर हॉस्पिटल चलाए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित कर दिए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। नामकोम अंचल में भूमि खरीद बिक्री और राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच की अनुमति दे दी है। एसीबी ने आज झारखंड उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ में हुई। यह मामला नामकोम अंचल के डुंडू क्षेत्र में भूमि के दाखिल खारिज से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करने, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विश्व की शांति, सुरक्षा तथा कल्याण को खतरे में डालने वाले अपराधों को रोकने में मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को एकजुट करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान IIIDEM में अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का विषय है हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना और चुनावों में मीडिया की भूमिका। सम्मेलन में चुनाव प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका, जिम्मेदार रिपोर्टिंग और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गढ़वा जिला प्रशासन मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए अभियान चला रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने बताया कि अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
4: SIR की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से चल रही है और डिस्ट्रीब्यूशन काम लगभग समाप्त हो गया है। दोनों विधानसभा में, भोनागपुर में तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है और अप्रोचिंग गढ़वा का भी 100% हो चुका है। डिजिटाइजेशन में तेजी आई है और हम समझते हैं कि दो दिनों के अंदर डिजिटाइजेशन का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा।
1: इधर लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण शत प्रतिशत पूरा हो गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि लगभग 2 लाख मतदाताओं के भरे हुए प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने लोगों से डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से राखी भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डाक से भेजी गई राखी का अपना विशेष भावनात्मक महत्व होता है।
5: डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी राखी स्वयं बनाकर या स्व सहायता बहनों के माध्यम से जो राखी बिकती है उन राखियों को खरीदकर लोकल फॉर वोकल का संदेश देते हुए अपनी भावनाओं से इस रक्षा बंधन के पवित्र त्योहार को जोड़ते हुए हम इसे और मजबूत बनाएं और अपने भाइयों की कलाई को और मजबूत करें।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 766 अंक बढ़कर 77,953 जबकि निफ्टी 196 अंक की बढ़त के साथ 24,269 पर कारोबार कर रहा था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। हजारीबाग के ईचाक प्रखंड में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण धान की खेती प्रभावित हो रही है। समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से धान की नर्सरी सूखने लगी है और खेतों में नमी की कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। नदियों, तालाबों और आहरों में भी जलस्तर कम होने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। क्रिकेट। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्वच्छ और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन अब सदर अस्पतालों से होगा। नई एम्बुलेंस की खरीद तक सिविल सर्जनों की देखरेख में चलेगी व्यवस्था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल। नामकुम भूमि हेरफेर मामले में एसीबी ने शुरू की प्रारंभिक जांच। हाईकोर्ट को दी जानकारी। राज्य सरकार ने दी पीई की मंजूरी। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:20 और 40 सेकंड हो चुके हैं और अभी वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। आज आप सुनेंगे सिद्धेश्वरी देवी के द्वारा गाए हुए गाने।

Thank you.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे सुगम संगीत, कलाकार है अनुप जलोटा।

इसी गीत के साथ सुगम संगीत यही संपन्न हुआ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

0: Builds off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today, and in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
2: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
3: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ही ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
4: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
5: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
7: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मॉल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और दोस्तों हमारे स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 2:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं हमारे फौजी भाइयों को समर्पित कार्यक्रम जय भारती के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत इस देशभक्ति गीत के साथ।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

साथियों, एक फौजी की जिंदगी सिर्फ वर्दी पहनने तक सीमित नहीं होती, वह संकल्प होता है मिट्टी के प्रति, तिरंगे के प्रति और भारत माँ के प्रति। कड़कड़ाते ठंड में सियाचिन की बर्फ हो या तपते रेगिस्तान की गर्मी, एक फौजी का हौसला कभी नहीं डगमगाता। आज हम उन्हें सलाम करते हैं और उनके साहस को नमन करते हैं।

दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे दिल्ली से कटरा का सफर 6 घंटे का रह जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। रांची में झामुमो सांसद महुआ मांझी ने परिसीमन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस समेत कोई भी दल परिसीमन का विरोध नहीं कर रहा है। हालांकि बैठकों के आधार पर उन्होंने कहा कि असली चिंता परिसीमन आयोग को लेकर है और लोगों में इसकी निष्पक्षता को लेकर संदेह बना हुआ है।
2: परिसीमन से दरअसल किसी को विरोध नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है। विरोध इस पर है कि परिसीमन आयोग जो बनेगा, उस आयोग में जो लोग रहेंगे वो कितने फेयर तरीके से परिसीमन करेंगे। जो भी विपक्षी पार्टियां जो अपोजिशन में है केंद्र में, उनके खिलाफ ही हो सकता है परिसीमन जाए। देश में विपक्ष रहेगा ही नहीं फिर, सिर्फ लोकतंत्र में फिर एक ही पार्टी अगर लोकतंत्र को चलाएगी तो आप समझ सकते हैं किस तरह से तानाशाही शुरू हो सकती है।
0: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस मेले के लिए देवघर और दुमका सहित पूरे 105 किलोमीटर लंबे कांवर पथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक सोमवार को उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए बिहार पुलिस के साथ विशेष समन्वय बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें झारखंड के सुहर्ष कुमार गुप्ता 99.97% के साथ स्टेट टॉपर बने हैं। वहीं रांची के ज्ञानेंद्र गर्व ने भी बेहतरीन सफलता पाई है। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने पर ज्ञानेंद्र निराश जरूर हुए, लेकिन माता पिता के सहयोग से उन्होंने दोबारा तैयारी की। उनका सपना डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है।
3: पूरे 2 साल का मेहनत लगता है, मुझे वापस देना पड़ेगा इसी सेम एग्जाम को। डेफिनेटली बहुत बुरा लग रहा था, फिर कोचिंग में एग्जाम्स वापस शुरू हो गया, फिर एग्जाम्स देते देते मेरा वापस लाइक मूड आ गया पढ़ाई का, फिर मैं पढ़ाई कर एकदम में वापस आ गया। मेरे जो दोस्त है, मेरे पेरेंट्स है, वो सब मेरा मोटिवेशन हाई रखते थे। सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा वापस भी अच्छा ही जाएगा, मुझे पूरा सोचना चाहिए। और दूसरा बोलूंगा कोचिंग में जो एग्जाम्स होते थे वो मुझे बहुत हेल्प किए वापस पढ़ाई करने में।
0: धनबाद के गोल्फ ग्राउंड स्थित गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस्कॉन अध्यक्ष प्रेमदास ने बताया कि 19 जुलाई तक चलने वाले इस उत्सव में भव्य मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिदिन 60,000 लोगों के लिए महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था है।
4: गोल्फ ग्राउंड में गुंडीचा मंदिर बनाया गया जो ठीक मेरे पीछे है, और यहाँ पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विराजमान है। अगले 4 दिन तक जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा यही रहेंगे और प्रत्येक दिन सुबह से शाम कभी भी आकर दर्शन ले सकते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो उसके लिए बुक स्टॉल्स हैं, कई सारे हमारे ग्रंथ वितरण हो रहे हैं। जहाँ जगन्नाथ जी है उसके बगल में कल्चरल पंडाल, जहाँ 4 बजे से 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम से।
0: राज्य में मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची, खूंटी और गुमला सहित 10 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में आज से 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 21 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में राज्य के सभी 5 प्रमंडलों की 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें अंडर 15 और अंडर 17 बालक बालिका वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टि बाधित हूँ और BEd स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गाँव खिंदासा तहसील कोडायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
0: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
0: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का

0: कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी, तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगी।
4: अलग होकर

0: रखने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
0: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
0: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
0: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
0: जी।
1: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
0: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
0: अच्छा?
1: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
1: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
0: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
1: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
0: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
0: अच्छा, तो ये बात है।
1: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000

0: मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15,000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमो लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
4: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
3: बोलो
4: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
3: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
4: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
3: अरे नहीं नहीं,
4: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
4: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
3: अच्छा।
4: राजम उनके साथ था, अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
3: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
4: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
3: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
4: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
3: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
4: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
3: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
4: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
3: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
3: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे कार्यक्रम रांची मेलोडीज के साथ। पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: స్వయం ఇది కట్టుబడి భారతీయ సేనా
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और हम हाजिर हैं मेलोडी सॉन्ग का पिटारा लेकर प्रोग्राम रांची मेलोडीज में। स्वीकार करें अपनी होस्ट एंड दोस्त मोनिता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी तो चिलचिलाती धूप का एहसास है और कभी अचानक आसमान से करवट ही बदल लेता है और काले बादलों की गर्जना और कभी कभी ठंडी ठंडी फुहारें और दोपहर की तपिश के बीच बारिश का आना ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने हमें ठंडे पानी से नहला दिया हो।

दोस्तों, दोपहर की बारिश का अंदाज ही अलग सा होता है। सड़कों पर उड़ती धूल अब बैठ जाती है और ऑफिस के लंच ब्रेक हो या घर पर आराम का वक्त, ये बारिश सुस्त दोपहर को भी एक नई ऊर्जा भर देती है।

दोस्तों, क्या कभी आपने अपनी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखा है? वो भीगते हुए पेड़, सड़कों पर पानी के छोटे छोटे गड्ढे और बारिश से बचने के लिए लोगों की वो हड़बड़ी, सब कुछ कितना दिलचस्प होता है ना।

दोस्तों, क्या आप भी आज के लंच टाइम में थोड़ा सा ब्रेक लेकर के दोपहर को रिलैक्स कर रहे हैं, या फिर बारिश में भीगने का आपने मन बना लिया है? तो फिर इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा क्या याद आ रहा है? गर्मा गर्म भुट्टे, चाय पकौड़े, या बस ये खुशनुमा मौसम को ही आप इंजॉय कर रहे हैं?

0: दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें बारिश में चाय और पकौड़ों की बहुत याद आने लगती है, या फिर वो पुराने गाने जो हमें किसी पुराने यादों में ले जाते हैं? सच कहूँ तो बारिश का अपना एक अलग सा और बहुत प्यारा सा जादू होता है। ये शहर की भाग दौड़ को कुछ पल के लिए थाम जरूर लेता है।
1: अरे अरे अरे, ना ना ना ना ना ना ना ना।

दोस्तों वक्त हो चला है कि हम कार्यक्रम राज्य मेलोडीज़ को यहीं विराम दें। तो हम चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि बारिश का लुत्फ तो ज़रूर उठाइए, लेकिन खुद को महफूज भी ज़रूर रखिए। आप अपनी रेडियो हम सफ़र मौनिता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने

0: 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे दिल्ली से कटरा का सफर 6 घंटे का रह जाएगा। कोडरमा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिंद से रवाना की गई यह ट्रेन हरित और आधुनिक रेल भविष्य की नई शुरुआत है। यह तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करेगी। रांची के नामकुम अंचल में जमीन घोटाले और राजस्व रिकॉर्ड गायब होने के मामले में एसीबी जांच का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट सचिव की अनुमति के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने एसीबी को 4 सप्ताह में प्रारंभिक जांच दर्ज कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के मधुपुर अखड़ा में हुई रविंद्र मुंडा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए गठित टीम ने मुख्य आरोपी विकास मुंडा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सरायकेला खरसावां के कपाली में पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने पीछा कर एक 4-पहिया वाहन को जब्त किया, जिससे 3 गायें बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मौसम विभाग रांची ने 21 जुलाई तक भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आज और कल रांची, गुमला, लातेहार और रामगढ़ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और दोस्तों हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 4:02 और 16 सेकंड हो चुके हैं और अभी वक्त है उर्दू कार्यक्रम का। आज कंपेयर्स है फौजिया और हिदायतुल्ला और प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: पास प्रैक्टिकल नॉलेज और काम करने की महारत हो।
1: और फौजिया लड़कियां और ख्वातीन तालीम और काम की दुनिया में बराबर शामिल होंगी तो घरेलू आमदनी बढ़ेगी, फैसला साजी बेहतर होगी और पूरा समाज फायदा उठाएगा। सेहतमंद बच्चों और नौजवानों की तालीमी और इल्मी कारकर्दगी बेहतर होती है।
0: बिल्कुल, जब नौजवानों में हुनर पैदा होगा तो न सिर्फ बेरोजगारी का खात्मा होगा बल्कि मुल्क की मौशियत को भी एक नई ताकत मिलेगी। इसलिए अगर हमें आने वाले कल को बेहतर और महफूज बनाना है तो पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर नए स्किल को निखारना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल फौजिया, और तरक्की के वक्त सबसे बड़ी जरूरत एक मजबूत हिकमत इल्मी है जिसका महवर मियारी तालीम और हुनरमंद इंसानी वसाइल हों, और वही इदारा जाति शफाफियत, सेहत, सिन्फी मसावात और माशी मवाक़े से जुड़ा हो। और इसीलिए फौजिया किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तालीम की रोशनी जब दिलों में जलती है, अंधेरों के शहर में नई सुबह पलती है, और हुनर के बीज जब जमीने अमल में बोए जाते हैं तभी तो हर खाली जगह में खुशहाली खिलती है।
0: बिल्कुल, बहुत खूब हिदायतुल्लाह, चंद इशार मैं भी पेश करती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: हुनर वो कुल्हाड़ा वो कलम वो एक मशल है जो बनाता है इंसान को खुद अपने काबिल है।
1: और फौजिया एक और बहुत जो अहम मौजू है पानी की हिफाजत। फौजिया पानी जिंदगी की बुनियाद है, इंसान हो या जानवर, दरख्त हो या खेत, शहर हो या देहात, सबकी बका पानी से वाबिस्ता है। अगर पानी ना हो तो न फसलें उग सकती हैं, न सनातें चल सकती हैं, न इंसान का वजूद बरकरार रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी जिंदगी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस जिंदगी बख्श नेमत को तेजी से जाये भी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, पानी की हिफाजत, पानी को बचाना और उसे महफूज रखना आज के दौर में पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। जी हाँ सामईन, पानी अल्लाह की तरफ से दी गई एक ऐसी अजीम नेमत है जिसके बगैर जमीन पर तख्लीक कायनात और जिंदगी का तस्वर भी नामुमकिन है। आज जिस तेजी से पानी का बेजा इस्तेमाल और बर्बादी हो रही है उसने आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अगर हमने आज पानी की हिफाजत ना की, पानी के जराए को साफ ना रखा और उसकी हर एक बूंद की कदर ना की तो आने वाला कल सूखे और बड़े बहरान से भरा होगा। इसलिए सामईन, ये हम सब की इखलाकी और समाजी जिम्मेदारी है कि हम पानी को जाया होने से बचाएं ताकि हमारी जमीन और हमारा मुस्तकबिल दोनों महफूज रह सके।
1: बिल्कुल फौजिया, पानी को जाये होने से बचाना है और बरसात के पानी को इकट्ठा करना है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि पानी को आलूदा होने से, गंदा होने से भी बचाना होगा। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, घरों का कचरा, प्लास्टिक और जहरीले मादे जब दरियाओं, नदियों और झीलों में डाले जाते हैं तो न सिर्फ पानी खराब होता है बल्कि इंसानों और जानवरों की सेहत भी खतरे में पड़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: साफ पानी का तहफ्फुज दरअसल सेहत आम्मा का तहफ्फुज है, और सेहत आम्मा का मतलब ही होता है कि न कि सिर्फ इंसानों की सेहत बल्कि इस रुए जमीन पर जितने भी जानदार हैं उन तमाम की सेहत से माना लिया जाता है।
0: बिल्कुल सामईन, आज के दुनिया के बहुत से हिस्सों में पानी की किल्लत एक संगीन मसला बन चुकी है। कहीं बारिशें कम हो रही हैं, कहीं जेरे जमीन पानी तेजी से नीचे जा रहा है, कहीं दरियाओं और तालाबों को आलूदा किया जा रहा है और कहीं पानी बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। अगर यही रविश जारी रही तो आने वाली नस्लों के लिए साफ पानी एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। तो सामीन, सबसे पहले हमें पानी के जाये को रोकना होगा। घरों में नल खुला छोड़ देना, वजू या नहाने में जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना या सफाई के दौरान पानी बहाते रहना, ये सब मामूली बातें मालूम होती हैं मगर मजमूई तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हर शख्स रोजाना थोड़ा सा पानी बचाए तो मुल्क भर में लाखों लीटर पानी महफूज किया जा सकता है।
1: बिल्कुल फौजिया, बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन अगर इसका पानी जाए हो जाए तो हम एक कीमती मौका खो देते हैं। पानी जमा करने के जदीद तरीके छतों से बारिश का पानी महफूज करना और छोटे

0: और फौजिया आपका जो आखिर मौजू था नशा हमारे लिए कितना नुकसान देह है। सामीन बेशक नशा हमारी जिंदगी हमारे घर हमारे मुआशरे और हमारे मुस्तकबिल से बराह रास्त ताल्लुक रखता है। नशा एक ऐसी बीमारी है एक ऐसा जहर है और एक ऐसी तबाही है जो इंसान की अक्ल इज्जत सेहत माल और किरदार सब कुछ छीन लेती है। ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों की तरफ ले जाता है।
1: जी हाँ सामीन, नशा सिर्फ शराब या मंशियात तक महदूद नहीं, इसमें हर वो चीज शामिल है जो इंसान के शऊर को कमजोर करे, इसके फैसले को खराब करे और इसे अपनी जिम्मेदारियों से दूर कर दे। आज के दौर में नौजवान इस खतरे का सबसे ज्यादा शिकार है। गलत सोहबत, तजस्सुस, जहनी दबाव, नाकामी का खौफ या सुस्ती की ख्वाहिश इंसान को इस दलदल में धकेल सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नशा इंसान को आजाद नहीं करता बल्कि गुलाम बना देता है। नशे में मुबतला शख्स अपने फैसलों पर काबू नहीं रखता, इसकी सेहत गिरती है, इसकी पढ़ाई मुतासिर होती है, इसकी मुलाजमत खतरे में पड़ती है और इसके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। वो अपने वक्त अपनी तवानाई और अपने मुस्तकबिल को खुद ही नुकसान पहुंचाता है।
0: हर बच्चे नौजवान और बड़े को ये मालूम होना चाहिए कि नशा कितना नुकसान। अगर बच्चों को इब्तिदा से ही इसके नुकसानात समझा दिया जाए तो वो आसानी से इसके जाल में नहीं फंसेंगे। कहा जाता है कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। अगर दोस्त मुस्बत हों, अच्छे हों, मेहनती हों, साफ सुथरे हों और मकसद रखने वाले हों तो वो इंसान की शख्सियत भी संवरती है। लेकिन अगर सोहबत खराब हो तो अच्छा इंसान भी गलत रास्ते पर जा सकता है।
1: और सामईन, फारिग और बेमकसद जहन अक्सर गलत रास्तों की तरफ मायल हो जाता है। और सामईन, बाज लोग दबाव, मायूसी, तन्हाई या गुस्से की वजह से नशे का सहारा लेते हैं। ये मसला सिर्फ कानून या सजा से हल नहीं होता, इसके लिए मोहब्बत, तवज्जह और मशावरत भी जरूरी है। अगर घर का माहौल पुरअमन हो, वालदैन बच्चों की बात सुने और मुआशरे में मदद का निजाम मौजूद हो तो नौजवान नशे की तरफ कम मायल होंगे।
0: और एक अहम बात ये अपने जहन नशी कर लेना चाहिए कि नशे से बचाव सिर्फ एक फर्द की जाती कामयाबी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की बका का मसला है।
1: और सामईन, एक नशा मुक्त समाज ही मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन और महफूज बना सकता है, इसलिए हमें अपने समाज से बुराई को जड़ से उखाड़ने का अज़्म करना होगा ताकि हमारे आने वाली नस्लें एक सेहतमंद, कामयाब और पुरअमन जिंदगी गुजार सकें। इसी पर एक शेर आपकी नजर है। नशा इंसान से उसका वकार छीन लेता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर पुकार छीन लेता है।
0: और फौजिया, जो अपने नफ्स पे काबू रखना सीख लेता है वही जमाने में इज्जत से जीना सीख लेता है, और खुशी वहाँ है जहाँ दिल में पाकीजगी हो, हयात नौ वहाँ है जहाँ बंदगी हो। तो हम पर फर्ज बनता है कि नशे को कभी हम हाथ ना लगाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई शख्स नशे की लत से आजाद होता है तो वो समाज का एक मुफीद शहरी बनता है और तरक्की की हर राह पर गामजन होता है। तो सामईन, अब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब महफूज आलम साहब, तो आइए मकाला के तहत समाप्त फरमाते हैं जनाब महफूज आलम साहब से मकाला। मकाले का उन्वान है फिराक गोरखपुरी, प्रेम और मानवता के शायर।
2: शायर अपने अहद का हसास तरीन फर्द होता है। वो अपने एहसास, मुशाहदात, तजर्बात और वारदात कल्ब को शेरी पैकर अता करके इंसानियत के सामने महब्बत, अमन और उख़वत का पैगाम पेश करता है। आलमी अदब में अगर ऐसे शायरों का ज़िक्र किया जाए जिन्होंने महब्बत को इंसानी ज़िंदगी की मिराज और इंसानियत को अपनी शायरी का मरकज़ बनाया तो फिराक गोरखपुरी का नाम नहायत एहतराम से लिया जाता है। फिराक गोरखपुरी उन खुशनसीब शायरों में हैं जिनकी फ़िक्र व बसीरत की तश्कील में हिंदू तहजीब व फ़लसफ़े के साहले अनासिर के साथ मुस्लिम तहजीब, इसकी शाइस्तगी, नफासत और जमालियाती अकदार ने भी अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि उनकी शायरी में हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब अपनी पूरी آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ ان کا کلام محبت، رواداری، انسان دوستی اور حسن احساس کا آئینہ دار ہے۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ فراق پیشے کے اعتبار سے انگریزی کے استاد تھے، لیکن ان کی اصل شناخت اردو شاعری ہے۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی فنی بصیرت، گہرے مطالعے اور تخلیقی قوت کے ذریعے اردو شاعری کے دامن کو وسعت بخشی۔ وہ صرف ایک ممتاز شاعر ہی نہیں بلکہ بلند پایا نقاد، محقق اور ادیب بھی تھے۔ ان کی شاعری میں جذبات کی حرارت، احساس کی لطافت اور فکر کی گہرائی ایک ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ مدتیں گزریں تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، مدتیں گزریں تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی۔ فراق کی شاعری میں محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ حیات ہے۔ ان کے ہاں عشق فرد سے نکل کر انسانیت تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے عہد کے نباض شاعر ہیں اور بدلتی ہوئی انسانی قدروں کو نہایت دلکش پیرائے میں پیش کرتے ہیں۔ عمر فراق یوں ہی بسر کی، عمر فراق یوں ہی بسر کی، کچھ غم جانا کچھ غم دورا۔ اس مختصر سے شعر میں فراق نے پوری انسانی زندگی کا فلسفہ سمو دیا ہے۔ ان کے نزدیک ذاتی دکھ اور اجتماعی مسائل ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ نامور نقاد محمد حسن عسکری نے فراق کے بارے میں بجا طور پر لکھا ہے، فراق نے اردو شاعری کو ایک نیا عاشق دیا ہے۔ اس نئے عاشق کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا وقار پایا جاتا ہے جو اردو شاعری میں پہلے نظر نہیں آتا۔ فراق محبت کو انسان کی سب سے بڑی روحانی قوت سمجھتے ہیں۔ ان کا ایمان تھا کہ محبت ہی نفرت، تعصب اور جنگ کا حقیقی علاج ہے۔ دکھتے دل سے نغمہ ساز محبت چھیڑ دے، دکھتے دل سے نغمہ ساز محبت چھیڑ دے، آپ رک جائیں گی جنگے کافر و دیندار کی۔ جہاں کو دے گی محبت کی تیغ آب حیات، جہاں کو دے گی محبت کی تیغ آب حیات، ابھی کچھ اور

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सांझ सरगम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 MHz पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कौशल विकास मिशन सोसाइटीज में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कथित फर्जी बैंक गारंटी मामले की न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। रांची में पेंशन समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज NPS संचय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और PFRDA के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन योजना से जोड़ने पर बल दिया। गढ़वा जिले में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शत प्रतिशत गणना प्रपत्रों का विवरण पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्र ने बताया कि 8,62,000 से अधिक प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। प्रशासन का लक्ष्य 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन करना है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने राजकीय श्रावणी मेला 2026 के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कांवर पथ पर यात्री शेड, जल निकासी और ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूरा करने को कहा है। पाकुड़ पुलिस ने रथ यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोहन सिंह और रेखा देवी पश्चिम बंगाल के बर्दवान के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी के 6 मोबाइल और नकदी बरामद कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के फुलसुरी गांव में आज सुबह करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। 36 वर्षीय छोटू महतो जब अपने खेत में मिर्च तोड़ने गए तब वहां पहले से गिरे बिजली के तार की चपेट में आ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। इस समय संध्या के 5:02 हो रहे हैं। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं हूँ छवि। श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम बता देते हैं कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार के गीत। संध्या के 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी पौधों के विकास के लिए खरपतवार नियंत्रण के बारे में। मनोरंजन करवाया जाएगा कुरमाली लोकगीत से रानी महतो और साथियों के द्वारा। भेंटवार्ता आप सुनेंगे प्रखंड स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। भेंटवार्ताकार हैं साधु चरण देवगम और उनसे बातें कर रहे हैं कमलिंदु महतो। मुंडारी लोकगीत आप सुनेंगे नीलम कक्षप और साथियों के स्वर में। इसके अलावा बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संध्या के 6 बजे आपको पुनः लिए चलेंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:02 पर होगा कार्यक्रम हुआ खड़ा, जिसमें चर्चा की जाएगी आधुनिक युग में कंप्यूटर। मनोरंजन होगा हेरो दुरंग से बोरोंगा हिस्सा और साथियों के स्वर में। इसके अलावा आप भेंटवार्ता और जानकारी की बातें भी सुनेंगे। 6:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया, जिसमें चर्चा की जाएगी विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में। इसके अलावा आप सुनेंगे कहानी कविता बालक बालिकाओं के द्वारा। भेंट करता है अंजू रानी देवगम। इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना पर भी जानकारी दी जाएगी। संध्या के 6:55 पर आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 से रात्रि के 8 बजे तक आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम है। रात्रि के 8 बजे से 8:45 पर होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 से 9 बजे तक आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। 9 बजे से 9:15 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 9:15 से 10 बजे तक आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 से 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 11:05 से 11:10 तक आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:10 पर हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे

कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज एक ही गीतकार रानी मलिक के लिखे कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनिए फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। अनु मलिक का संगीत है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार रानी मलिक के लिखे कुछ गीत। अब आपको सुनवाते हैं बाजीगर फिल्म का ये गीत, विनोद राठौर की आवाज़ में अनु मलिक का संगीत है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार रानी मलिक के लिखे कुछ गीत। अब आपको सुनाते हैं आशिकी फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीत का रानी मलिक के लिखे कुछ गीत। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक ही गीत का रानी मलिक के लिखे कुछ गीत। समय अब हो चुका है समाप्त, इसलिए अब गुलदस्ता कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ आपको सभी गीत पसंद आए होंगे। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: श्रोताओं पेश है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।
1: सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खेतीबाड़ी के साथ साथ पर्व त्योहारों का माहौल भी है। रथ यात्रा आरंभ हो चुका है, आप सबों को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई बहनों, रथ यात्रा हमारे कृषि कार्यों में शुभ कार्य से भी जुड़ा हुआ है। बुजुर्ग कृषकों का कहना है कि हमें धान की खेती का काम पहला या फिर घुरती रथ यात्रा तक समाप्त कर देना चाहिए, जिससे फसल अच्छी होती है। लेकिन किसान भाई बहनों, समय के अनुसार बारिश ना होने के कारण काम सही समय पर नहीं हो पाता है। फिर भी किसान अपने कर्म से पीछे नहीं हटते हैं, बस करते ही जाते हैं। तो किसान भाई बहनों, खेती कभी भी हो पर स्वस्थ और स्वच्छ कृषि होनी चाहिए, यानी पौधों के बेहतर विकास के लिए पौधों के आसपास कोई अनावश्यक घास फूस या फिर पौधे खरपतवार ना हो, जिससे पौधों का विकास बाधित होता है। इसलिए पूर्व से ही खेतों की गहरी जुताई यानी कि गर्मी के दिनों में कर लेनी चाहिए और फसल लगाने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी भी हो, जिससे अन्य घास पात ना निकले। यदि निकल भी जाए तो निकोनी करके उसको हटा देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण हो जाए तो इसके लिए आप रोपाई के 4 दिन या फिर 5-6 दिन के बाद तुरंत ही अपने कतारों में जो लगे हैं फसलें, उनके बीचों बीच कोनोवीडर चला सकते हैं, ताकि आपके आने जाने के क्रम में जो चलने से आपके पैरों के माध्यम से मिट्टी भी नरम हो जाएगा और जो भी घास फूस या फिर अनावश्यक खरपतवार हैं इनका नियंत्रण भी हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा जो फसल है वो बेहतर तरीके से बढ़ेंगे और अच्छा उपज भी प्राप्त होगा। तो किसान भाई बहनों, इन बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो हम कोई भी फसल क्यों ना हो, बेहतर तरीके से हम अपना उपज प्राप्त कर सकते हैं। और सही बीज होना चाहिए, अच्छे किस्मों का चयन करें, तभी हम अपने फसलों में बेहतर परिणाम देख पाएंगे। तो जानकारी हो रही थी हम अपने खेतों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। इसके पश्चात हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक कुरमाली लोकगीत रीना महतो एवं साथियों के स्वर में।

0: इस लोकगीत के पश्चात आपके लिए एक जरूरी संदेश।
1: क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न

0: क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है।
1: तो किसान भाई बहनों, अभी हम संदेश सुन रहे थे और इसके पश्चात हम मिलते हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी साधुचरण देवगम जी के साथ, जो जानकारी दे रहे हैं प्रखंड स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही क्या क्या योजनाएं हैं, इनका हमारे आम जनता कैसे लाभ ले सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के मिलते हैं साधुचरण देवगम जी के साथ।
2: श्रोता साथियों, इस वक्त हम मिल रहे हैं कुचाई प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री साधुचरण देवगम जी के साथ, और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही प्रखंड स्तर पर, इस पर हम कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारा। जोहार सर।
3: जोहार, और साथ में आकाशवाणी चाईवासा के सभी श्रोताओं को भी हार्दिक जोहार।
2: तो जैसे कि सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर बहुत कुछ योजनाएं चल रही है, तो हम कुछ उसमें से जानकारी लेना चाहेंगे और उन विभिन्न योजनाओं पर आधारित, जैसे कि कोई आवास योजना है या फिर मनरेगा योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, इस तरह का, तो कुछ ऐसी योजनाओं पर जैसे कि आवास योजना क्या हम बातें करें, तो फिर उस पर लाभुक को शुरुआती दौर में क्या क्या करना होगा, इसके लिए क्या क्या सरकार की योजनाएं।
3: बहुत सही कहा आपने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जी, दोनों के स्तर पे कई प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो विशुद्ध रूप से राज्य सरकार द्वारा संचालित होती हैं, और कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के फंड समाहित रहते हैं। तो हम लोग जिनसे लोगों का सीधा वास्ता पड़ता है, ऐसी योजनाओं के संबंध में आज संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रशासनिक भाषा में ऐसा कहा जाता है कि सरकार के पास माँ के पेट से लेके कब्रिस्तान तक की योजनाएं हैं। जैसे कोई महिला गर्भवती होती है तो हम लोग टीकाकरण कराते हैं, तो वो भी एक सरकारी योजना का भाग हुआ, हिस्सा हुआ। उसी तरह से जब बच्चा जन्म लेता है तो संस्थागत प्रसव होता है कहीं पे, तो वो भी एक सरकारी योजना का हिस्सा हुआ। बच्चे के पैदा होने के बाद फिर अलग अलग योजनाएं शुरू हो जाती है, शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी में जाता है, उसके बाद विद्यालयों में जाता है, तो उसके बाद फिर अलग अलग कॉलेज, उम्र के अनुसार अलग अलग कॉलेज में गया या फिर किसी और संस्थान में गया। तो ये शैक्षणिक सुविधाएं जो भी दी जाती है वो भी सरकार की योजना का एक हिस्सा होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि युवा अवस्था में विवाह की जब अवस्था आती है तो विवाह के लिए भी सरकार के पास योजनाएं हैं। तो ऐसे करके जीवन के अलग अलग पड़ाव पे सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं निर्धारित की गई हैं। यहाँ तक कि मरणोपरांत भी उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कई शर्तों के साथ सरकारों द्वारा योजनाएं संचालित की जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक सरकार के पास योजनाएं हैं। हम कह सकते हैं कि माँ के पेट से लेकर के कब्रिस्तान तक सरकार के पास योजनाएं हैं। तो आइए हम कुछ विशेष योजनाओं के संबंध में जानते हैं जिसका क्रियान्वयन प्रखंड स्तर से किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों द्वारा संचालित योजनाएं सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जैसे ऊंचाई का क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो विशुद्ध रूप से ये ग्रामीण क्षेत्र है
4: जी।
3: यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं है और कमोबेश आसपास के हमारे बाकी प्रखंडों की भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति है
4: जी।
3: तो यहाँ पे मनरेगा एक बहुत ही कल्याणकारी योजना जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, उनके हाँ। लिए साबित होती है।
4: हाँ।
3: कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा कि जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोग शहरों से वापस गांवों की ओर आए, तो मनरेगा ने उनके लिए एक संबल का काम किया। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो मजदूरों के लिए एक संबल साबित हुआ।
4: हाँ।
3: तो आज भी मनरेगा लगभग हम लोग क्रियान्वयन करते हुए 20 साल पूरा कर चुके हैं, 2006 से लेकर के 2026 तक।
4: हाँ।
3: तो ये मनरेगा चल ही रही है और इसके तहत कई सारे कार्य किए जाते हैं। पहला एक काम है जो कि किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए ये बहुत ही लाभकारी मुझे प्रतीत होता है।
4: हाँ।
3: बिरसा हरित ग्राम योजना।
4: अच्छा अच्छा।
3: तो इसके तहत बागवानी किया जाता है
4: जी,
3: जिसमें 50 डिसमिल न्यूनतम जमीन होना चाहिए,
4: होना चाहिए। हाँ।
3: और 1 एकड़ तक की जमीन पे आप सरकार से लाभ ले सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: तो इसके तहत पहला हो गया बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार आम का पौधा बागवानी।
4: अच्छा अच्छा।
3: आम बागवानी हम लोग कहते हैं, इसमें विशुद्ध रूप से आम के पौधे लगाए जाते हैं
4: जी।
3: और इसमें आप 50 डिसमिल से लेकर के 1 एकड़ तक,
4: 1 एकड़ तक
3: क्षेत्रफल में इसका हाँ। लाभ ले सकते हैं।
4: अच्छा।
3: दूसरा होता है इसमें मिश्रित बागवानी। मिश्रित में आम के साथ साथ और भी दूसरे फलदार पौधे, फलदार पौधे इसमें लगा सकते हैं, जैसे लीची हो गया, नींबू हो गया, ये सारे पौधे आप इसमें लगा सकते हैं।
4: तो
3: इसके अलावा कई क्षेत्रों में यहाँ पे सहजन या मुनगा जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी भी खेती की जाती है और उसके लिए 25 डिसमिल जमीन कम से कम चाहिए होता है
4: जी।
3: और कुछ क्षेत्रों में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ऐसे बांस की भी खेती की जाती है।
4: अच्छा,
3: जैसे पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र हम लोग देखते हैं।
4: हाँ।
3: शकुलिया बैरागोड़ा के आसपास का क्षेत्र बांस के लिए, बांस के लिए वो फेमस है। तो उन क्षेत्रों में ये बांस की भी खेती बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत की जाती है। तो ये तो हुआ बिरसा हरित ग्राम योजना। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों के विकास के लिए
4: अच्छा।
3: पोटो हो, वीर शहीद पोटो हो, खेल मैदान विकास योजना
4: अच्छा।
3: ये संचालित की जाती है, अभी मनरेगा के तहत संचालित की जाती है
4: जी।
3: इसमें मैदान का समतलीकरण होता है
4: अच्छा।
3: और साथ में 15वीं वित्त आयोग के योजनाओं के अभिसरण से वहाँ खेल मैदान के किनारे हम लोग चेंजिंग रूम वगैरह बनाते हैं
4: जी, जी।
3: लड़कों के लिए अलग से, लड़कियों के लिए अलग से
4: जी।
3: तो ये वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना हुआ।
4: जी, युवाओं के विकास के लिए खेल बहुत
3: जी
4: है।
3: बिल्कुल। हाँ। उसके बाद सिंचाई के लिए जैसे कुआं, तालाब, इसकी आवश्यकता होती है
4: जी।
3: तो मनरेगा में हम लोग बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना एक संचालित करते हैं
4: जी।
3: इसके तहत कूप निर्माण योजना का संचालन किया जाता है जिसकी गहराई 35 फीट होती है
4: जी।
3: तो हमारे किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा डोबा एवं तालाब, इसकी खुदाई की भी योजना मनरेगा के तहत संचालित की जाती है
4: जी।
3: और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है
4: जी,
3: कहीं ऊंचा है, कहीं ढलान है
4: जी,
3: तो मैदान समतल नहीं है हम लोग के क्षेत्र में। तो जहाँ काली मैदान है वहाँ अगर आप मेड़बंदी करके अपना खेत बनाना चाहते हैं
4: अच्छा।
3: उसको उपयोगी बनाना चाहते हैं
4: जी,
3: तो मेड़बंदी योजना भी मनरेगा के तहत संचालित की जाती है। तो हमारे किसान भाई इसका भी लाभ ले सकते हैं
4: जी।
3: उसके बाद हम लोग बात करते हैं आवास योजनाओं की
4: जी।
3: यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार की आवास योजनाएं संचालित होती हैं। एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दूसरा अबुआ आवास योजना
4: जी,
3: तीसरा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना। इसके अलावा और भी कुछ योजनाएं हैं
1: जी
3: जो विशेष समूहों के लिए संचालित की जाती हैं,
1: अच्छा।
3: जैसे एक पीएम जनमन करके हाल में आया है
1: जी।
3: तो उसमें हम लोग आदिम जनजाति समूह के लोगों को
1: हाँ,
3: लाभान्वित करते हैं
1: जी।
3: और एक बिरसा आवास योजना है, इसके तहत भी हम लोग आदिम जनजाति समूह के लोगों को लाभान्वित करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आदिम जनजाति समूह के लोग हैं
1: हाँ।
3: तो वो इसका लाभ उनको दिया जा सकता है।
1: अच्छा,
3: बाकी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें चयन प्रक्रिया वगैरह जो है वो आजकल ऐप के माध्यम से उसमें शुरू होता है।
1: अच्छा,
3: ऐप के माध्यम से प्रत्येक घर का उसमें विजिट किया जाता है
1: जी हाँ।
3: वो विजिट होने के बाद वो ग्राम सभा में उसका जो है पुटअप किया जाता है। ग्राम सभा से पारित होने के उपरांत फिर प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय जो कमेटी है वहाँ से अप्रूव होने के बाद एक अस्थाई प्रतीक्षा सूची बनती है।
1: अच्छा,
3: और उस अस्थाई प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम रहता है
1: हाँ।
3: उनको क्रमानुसार
1: जी
3: लक्ष्य के अनुसार उसको लाभान्वित किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक लक्ष्य दिया जाता है प्रत्येक प्रखंड को
1: हाँ।
3: तो उसके अनुसार उनको लाभान्वित किया जाता है।
1: अच्छा,
3: तो अबू आवास के साथ भी लगभग सेम प्रक्रिया है
1: जी।
3: और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास में वैसे लोगों को लाभान्वित किया जाता है जो 30 साल या उससे ऊपर की हमारी विधवा बहनें हैं
1: हाँ।
3: या फिर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में उनका घर टूट गया
1: हाँ।
3: या फिर और भी किसी प्रकार के आपदा के वो शिकार लोग हैं।
1: अच्छा,
3: उन लोगों को इस आवास योजना से लाभान्वित किया जाता है
1: हाँ।
3: तो इसमें आवास निर्माण की प्रक्रिया जो है आपका स्वीकृति मिलने के पश्चात अलग अलग स्टेज में उसका पैसा दिया जाता है
1: जी, जी, हाँ।
3: जैसे प्रथम किस्त की राशि आपको दे दी जाती है उसको उसके बाद आपको एक निश्चित लेवल तक
1: हाँ,
3: आवास निर्माण करना पड़ता है, फिर अगला बिल उसमें दिया जाता है जी जी। और आवास निर्माण पूर्ण होने के बाद आपको अंतिम किस्त की राशि दी जाती है
1: जी, जी।
3: उसके बाद तीसरी योजना हम लोग देखते हैं जैसे अभी 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में उसके तहत जिला स्तर पे जिला परिषद, प्रखंड स्तर पे हमारा पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के स्तर पे ग्राम पंचायत, ये 3 स्तरों पे सरकार द्वारा राशि दी जाती है 15वीं वित्त आयोग के तहत
1: जी।
3: तो इसके तहत भी अलग अलग प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है, जैसे कुछ होती है उसमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए,
1: अच्छा,
3: और कुछ होती है जो आधारभूत संरचना वगैरह हम लोग निर्मित करते हैं जैसे PCC हो गया
1: जी,
3: या फिर आपका कहीं पर नाली निर्माण हो गया
1: जी।
3: तो इस तरह की कई सारी योजनाएं 15वीं वित्त आयोग की राशि के तहत संचालित की जाती है। जैसे पेयजल की योजनाएं आप कई सारे
1: जी, हाँ, हाँ,
3: ग्रामों में देखते हैं,
1: पेयजल काफ़ी असुविधाएं हैं
3: जी जी हाँ। तो उसमें जैसे सोलर जल मीनार वगैरह
1: जी
3: है,
1: हाँ, हाँ।
3: तो ये सारी योजनाएं 15वीं वित्त आयोग के तहत संचालित की जाती है।
1: अच्छा,
3: उसके बाद चौथी प्रकार की योजनाओं के बारे में हम लोग बात करें तो पेंशन योजना है।
1: पेंशन योजना जी
3: हाँ जी। तो पेंशन योजनाओं में भी कुछ केंद्र सरकार की होती है, कुछ राज्य सरकार की होती है, और कुछ योजनाएँ ऐसी होती है जिसमें एक निश्चित अनुपात में कुछ केंद्र सरकार की राशि लगी होती है और कुछ
1: हाँ।
3: राज्य सरकार की,
1: अच्छा,
3: दोनों के संयुक्त फंड इसमें लगे होते हैं कुछ
1: अच्छा,
3: कुछ योजनाओं में
1: हाँ।
3: तो केंद्रीय योजनाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,
1: अच्छा अच्छा
3: ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है,
1: हालांकि
3: अच्छा। एक मैचिंग अमाउंट जो है उसमें राज्य सरकार की भी लगी होती है।
1: अच्छा,
3: तो दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, और तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें न्यूनतम उम्र 60 साल होनी चाहिए।
1: अच्छा जी,
3: और ये BPL आधारित है, जो BPL धारी होते हैं
1: हाँ।
3: और 60 साल से ऊपर के होते हैं,
1: अच्छा,
3: उन लोगों के लिए ये योजना
1: जो
3: संचालित की गई है
1: जी।
3: दूसरी योजना जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन है
1: जी।
3: 40 साल अथवा उससे ऊपर की जो भी बहनें विधवा हो गई
1: हैं है।
3: और साथ में वो BPL परिवार से
1: बिलोंग करते हैं
3: तो उनके लिए ये योजना संचालित की जाती
1: अच्छा,
3: है
1: अच्छा, हाँ।
3: तीसरी योजना है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना है, जो 18 साल या उससे ऊपर के जो भी भाई बहन हमारे दिव्यांग हो जाते हैं
1: हाँ
3: और साथ में बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं, तो उनके लिए ये योजना संचालित की जाती
1: अच्छा।
3: है। उसके बाद राज्य सरकार की योजना के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वजन पेंशन योजना यहाँ पे संचालित की जाती है
1: जी।
3: इसके तहत जो वृद्ध व्यक्ति हैं, विधवा हैं,
1: हाँ।
3: दिव्यांग हैं या फिर निराश्रित, निराश्रित में हम वैसे लोगों को सम्मिलित करते हैं जो 45 साल से ऊपर की हमारी बहनें हैं
1: हाँ।
3: लेकिन अभी तक अविवाहित
1: अविवाहित हैं,
3: ऐसे लोगों को भी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाता है सर्वजन पेंशन योजना से।
1: अच्छा,
3: तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए इसमें भी एज क्राइटेरिया जो है, उम्र का जो एक कट ऑफ डेट है वो न्यूनतम 60 साल होना चाहिए,
1: होना चाहिए हाँ।
3: विधवा के केस में न्यूनतम 18 साल होना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा,
3: और दिव्यांग के केस में यहाँ पे हम लोग एक स्वामी विवेकानंद निःशक्तता स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना ये संचालित किया जाता है, तो इसमें न्यूनतम उम्र जो है वो 5 साल होना चाहिए।
1: अच्छा हाँ,
3: न्यूनतम उम्र 5 साल होना चाहिए। और मेडिकल बोर्ड, जिला का जो हमारा सदर अस्पताल
1: हाँ।
3: मेडिकल बोर्ड से निर्गत
1: हाँ,
3: एक मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है
1: जी।
3: जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40%
1: होना चाहिए
3: जी, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रतिशत होने से हम लोग इसका लाभ देते हैं।
1: अच्छा
3: जी, तो
2: इनसे संबंधित जो भी जो समस्या है वो अपना कागजात के साथ कल्याण विभाग में आकर के संपर्क कर सकते हैं
3: जी। जी, हमारे प्रखंड में यहाँ पे अलग से पेंशन सेक्शन भी रहता है
1: जी,
3: तो वहाँ पे दिया जा सकता है। वो प्रखंड स्तर से ही आजकल प्रखंड विकास पदाधिकारी को शक्तियाँ दी गई है, तो
1: जी
3: पहले ये अनुमंडल स्तर से स्वीकृत होता था।
1: अच्छा अच्छा,
3: जितनी भी पेंशन योजनाएं थी
1: जी
3: वो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के स्तर से ही इसको स्वीकृति दी जाती थी
1: जी।
3: मुझे जहाँ तक याद है ये 2019 से ये परिवर्तन किया गया है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी उनको ये शक्तियाँ दी गई हैं पेंशन स्वीकृति करने की
1: जी, जी, जी।
3: तो ये प्रखंड स्तर से ही स्वीकृति का कार्य
1: अच्छा, अच्छा,
3: किया जाता है आजकल
1: जी।
3: उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक और उपयोगी योजना है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
1: हाँ।
3: मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
1: जी,
3: तो इसके तहत 5 प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है। तो एक हो गया बकरा विकास योजना, दूसरा सुकर विकास योजना,
1: अच्छा
3: तीसरा ब्रॉयलर कुक्कुट योजना
1: जी,
3: जिसमें मांस उत्पादन के लिए हम लोग
1: हाँ।
3: ब्रॉयलर का पालन करते हैं
1: करते हैं।
3: उसके बाद चौथा है लेयर कुक्कुट योजना,
1: अच्छा
3: जिसमें हम लोग अंडा उत्पादन के
1: अंडा
3: लिए
1: उत्पादन करते हैं
3: मुर्गी पालन करते हैं। और पांचवा है बत्तख चूजा वितरण योजना,
1: अच्छा अच्छा,
3: तो इसके तहत भी 75% से लेकर के 90% तक छूट रहता है अलग अलग कैटेगरी वाइज जी जी, तो इसका भी लाभ लिया जा सकता है। और इसमें खास बात यह है कि बकरा पालन और बत्तख चूजा को छोड़कर
1: हाँ।
3: बाकी जो 3 योजनाएं हैं
1: हाँ।
3: सुकर विकास योजना, ब्रॉयलर कुक्कुट योजना, लेयर कुक्कुट योजना
1: जी।
3: इन 3 योजनाओं में मनरेगा के तहत पशु शेड भी दिया जाता है।
1: अच्छा, पशु शेड भी हाँ
3: जी जी, लेकिन शर्त ये है कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभुक आपको पहले होना है,
1: होना चाहिए हाँ।
3: उन लाभुकों को मनरेगा के तहत ब्रॉयलर कुक्कुट
1: जी,
3: लेयर कुक्कुट और सुकर कुक्कुट, अगर हाँ। इसके आप लाभुक हैं तो आपको मनरेगा के तहत सेड भी दिया
1: जाता
3: है।
1: अच्छा
3: जी जी जी, तो ये खास खास योजनाएं हैं जो प्रखंड स्तर से हम लोग संचालित करते हैं। और भी योजनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं जी जी जी।
2: प्रखंड विकास महोदय, आप अपने प्रखंड स्तर से चलाई जा रही जो विभिन्न योजनाएं हैं इन पर संक्षिप्त ही सही लेकिन बहुत कुछ जानकारी दी, इसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।
3: आपको भी बहुत बहुत जोहार और साथ में हमारे सभी श्रोतागण को जोहार।
1: तो किसान भाई बहनों, अभी हम मिल रहे थे साधुचरण देवगम जी के साथ, और सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं हैं इनका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। इस मुलाकात के पश्चात पुनः हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक मुंडारी लोकगीत नेलिम कच्छप एवं साथियों के स्वर में।

0: और इसी लोकगीत के साथ ही किसान भाई बहनों, आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब कमलेंदु को विदा दें, सभी को पुनः एक बार जोहार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा और अन्य गणमान्य लोगों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मानसून की स्थिति, सिंचाई परियोजनाओं और किसान समृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। धनबाद के निरसा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं के छात्र के साथ रैगिंग और बेरहमी से मारपीट के बाद आज परिजनों ने स्कूल गेट पर जोरदार हंगामा किया। सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोग धरने पर बैठ गए। बीडीओ इंद्रलाल ओहदार ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। खूंटी में आपराधिक और नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि पिछले 2 महीनों में हत्या, लूट और रंगदारी के मामलों में 20 अपराधियों को जेल भेजा गया है। इस दौरान 15 पिस्टल, 48 कारतूस और नक्सली संगठन पीएलएफआई के पर्चे बरामद किए गए हैं। सिमडेगा जिले के विभिन्न थानों में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया है। पिछले एक सप्ताह में 281 किलो जावा महुआ और महुआ शराब नष्ट की गई। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को भी ध्वस्त कर इसे अवैध कारोबार पर कड़ा अंकुश लगाया है। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित क्रिकेटा ऑडिटोरियम में कल पूर्वाहन 10 बजे 135वें दुरंध कप 2026 के ट्रॉफी शोकेस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: एथलेटिक्स मिना आर्चरी मिना फुटबॉल मिना बॉडी बिल्डिंग मिना हॉकी मिना हाँ जूडो कराटे सब ना ना स्पोर्ट्स कोटा रे सेंट्रल गवर्नमेंट रे मिना अब स्टेट गवर्नमेंट रे ना मिना
1: तो ना सारी अकाजी तो ना ठीक है ना दो अकाजी तो अबन जीवन जोड़ी दिंगत बन गया है इन दो आते का अबन ना द चीन अबन पाइटी दिंगत अब वा चले के बन चला था अलिंग अकाजी का मतलब
2: अलिंग दो वाउलिंग चलाओ कर गया हम तो उनको सब लिंग पढ़ाओ चले का अच्छी तन को गया दो बुढ़े बुढ़ी को ना को माँ बाप ते को अकाउलिंग लेल को तन गया एंड दो इनका के अब चिल के हाथो दिसम बुरु दिसम मिसम लिखाते मिन दो एक तो संस्था चलाओ दना इतारे जेएसएलपीएस को ने एंड दो इना करे पार्टी पार्टी पे लिंग दिंगा तो लिंग मका जी पर दिन दिया मजदूरी सब ते के नाम उठाई कि ना इना कोते के लिंग दिंगा तो लिंग एम तड़ी
1: अच्छा हां एंड दो वार दो ए गप को दो कली दो काको मान आजी ने दोनी मिने इनोंगे इना को दालो का इनों के मले दो काको
2: हतंगान को अब नुतुम को कोई देखा अब हो जाती को एसो नीच ते को ले लबु एन हिसाब कते जब अलिंग हो त आरे इना जुनून टाइ के हिसाब ते अलिंग लिंग मिते छि अच्छा दबु देश लगे नडो अब राज्य लगे अब नीना को पार्टी बे नडो सफलता केते हो जवन मन लेकिन दिंगा को एसो लिंग जगह रे गे
1: अच्छा नैना रिया श्रेय गे तुरंग आ ना दो इन इनम के दो अति ओपन तार बे नंग दो बजे ना
0: నేను ఇను కెనడా దేశ టైకిన ఇన్ కెనడా దేశ రేన్ వెనిపింగ్ సహర్ టైకిన ఇన్ ఇంత అరవాలన
1: అచ్చా
0: ఇంత అతిదో ఇండియా తలస నోజన 8 గంటల లగాన ఫ్లైట్ రే
1: అచ్చా
0: ఎంబెస్టర్
1: అచ్చా
0: ఎంబెస్టర్ అయితే ఉండు 6 గంటల లగాన ఇన్ కెనడా
1: అచ్చా
0: టోటల్ 22 గంటల సఫర్ టైకిన యా
1: అతిగా ఎందో మీటింగ్ ద ఇంటి కో తతైం తక మంటి అకని కో కజి వచా ఎంటి కో మనియా మీటింగ్ ద అక్వా కజి కో కజి దుపురు నే కో
0: पहली बार के तय ना बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया था जो इटा ट्रेन रे तो बहुत बार दुबे के ट्रेन बस करे कार करे लेकिन जहाज रे रासा के जो इटा नो गया बहुत बढ़िया नो गया था
1: ये अब तो निपा दो कजिर दो गाड़ी के चक्का को ले लो आती है चलाओ तन गाड़ी का दुबके ना कर बच्ची रेल गाड़ी का दुबके ना हो रही हो इन इन पा दो चक्का तो बनो तो चिकते ये लेके रंग से ना
0: इना तो हम चितन चितन आफर है
1: ना रिमिल को परम बनना अच्छी रिमिल भी था
0: रिमिल को तो परम हुआ चितन आए तो रिमिल के ले लो अलग जाना का ले लो
1: अच्छा अच्छा तर पर रिमिल तो मिला
0: मिला
1: अच्छा रिमिल तो चितन से नो
0: से नो चितन आए तो से नो
1: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है इन दो दोस्त का सब में जुड़ी बनती आ रही हो बन पूरे कर लिया इन दे इन तारे अबन अबू ए इनुम तेई ना अबन बॉडी बिल्डर तेई ना इन दे पक्कन स्थान बना
0: रे पूरे विश्व रे अलग है पहला स्थान था ना अलिया दो चिल के वजन हिसाब तो बहुत 55 केजी 60 केजी इन इनके आते अले 12 जन ले सेंड ना भारत है थे अलिंग दो सबसे कम वेट रे 55 केजी रे अलिंग गलिंग सेंड ना 55 की तो वजन रे फर्स्ट था कि ना लिंग ना ते सेकंड दो ताइवान देश और थर्ड दो चीन देश
1: इन तारे आसान लगा चिल के था कि ना मना
0: इनका 7 तो जज को तय हुए हां तो अले बॉडी बिल्डिंग रे पोजिंग ची लिया हां 7 पोजिंग जज को आपको पॉइंट को में 7 इन आते 7 जन को पॉइंट को जोड़ा हुआ है
1: हां
0: इन आते ओकोया पूरे पॉइंट हुआ है इन के फर्स्ट को में
1: अच्छा अच्छा हां अंदर तुरंत को ओपोता ले कोचिंग में था
0: का के का ओपोता वाला गेम में ना इन आते कुश्ती
1: कुश्ती ना का
0: हां कुश्ती
1: ना आपन सुंदर तक हम सुसुनन ले काची
0: नीना तो आको को काजी डीए जज को लेके माने बेस्ट ऑफ 6 को 6 जन को इन लिए जा चिमन को तय हो रे चाहे 60 जन 70 जन आ तीन बार रे इन फाइनल होगा
1: तीन बार
0: रे
1: अच्छा इन तारे इनका को सला के पिया थे चा दो सीमितिंग रिजल्ट तक उदबी माने
0: रिजल्ट तो का बेस्ट ऑफ 6

अपना चाहिए। इनायत लतर पार इनको गे को असुल मरंग को अड़ो बले होना थे ती जो का तुतु नो जना थे सेन भाई इतना मिसिर में भर से में गेल से में लेकिन उनको उनको ओल पड़ाओ ची जोम नूरे को घटी उतना चीका को मुदी उतना इनकन उनको असुल मरंग दिया मियत सरकार पाए सुविधे मिना इना लगे अब जिला बाल संरक्षण इकाई तेबो बेपटा ची सेन जना थे बंतर दो CWC ची बाल कल्याण समिति तेबो सेन जना थे इनकन कबू असुल मरंग ते अब सनंग तना उन को बांजी किने को इनकन को अलग दो उन को अकुआ तनाज देरी ना कुआ को ओल बोल किए थे और इन उन को आए थे उन उन कोई उन अंबर बखना है इन दो इन इनी इन कोई उन इडी थे अलग इन जिधि कुआ उन कुआ तने इडी थे नम तना इन दो कुआ तने इनी का को ये मई इन लिखा नियम मिला पर इन जगह लो थे के मार तेसिंगे आकर निंतार बगुड़ी तना तेसिंगे आकर चिल के बोट कर केड़ा इना दो नेन डोगोर ते ओल कोलो जो इपे हो अकड़ा द्वारा केंद्र देशक आकाश मणि चाई वसा पीन इरिल पीए पीए बार गुल मुया ते निकुल कम ओल कोलो जो इपे तोंडुरे अलिंग राम सिंह चतर थिंगे तुमल जीवन ते जोहार।

जय हिंद बच्चों, आज के नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजु दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। चलिए आज भी कुछ नया सीखेंगे। बच्चों, आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। दुनिया भर में 17 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने, पीड़ितों के अधिकारों की वकालत करने और युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ निष्पक्षता, समानता, यानी कि सबको समान रूप से, है ना, निष्पक्ष रूप से, और प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार और सम्मान दिलाना न्याय कहलाता है। ठीक है, अगर हम कानूनी न्याय की बात करेंगे तो वह कानून के शासन और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा है। इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को, नागरिक मतलब जैसे हम भारत के नागरिक के लिए समान कानून समान रूप से है, सबके लिए समान रूप से है। अपराध करने पर समान दंड का प्रावधान हो और न्यायालय में बिना किसी पक्षपात के उसको ज़्यादा इसको कम सज़ा मिले। अगर उन्होंने कोई गलती की है, कोई अपराध किया है, तो उसको कम सज़ा मिलेगा, इसको ज़्यादा सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सबको जिस तरह से उन्होंने गलती की है उस हिसाब से उसको बराबर के सज़ा मिलेगा, है ना। और सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो, या समाज के सभी, समाज में सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। जैसे इसके तहत जैसे जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है और सभी को विकास के समान अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आपको भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, ये नहीं कि वो नहीं पढ़ सकता है, ये नहीं पढ़ सकता है, वो इस उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इस क्लास में नहीं बैठ सकता है, इस बेंच पर ये दोनों नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ नहीं। सबको साथ में पढ़ना है, सब तभी तो। आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, स्कूल का जो ड्रेस होता है वो सबका एक जैसा होता है। क्यों? ताकि सबको एक समान समझा जाए। सब शिक्षा जब पाते हैं तो सबको समान शिक्षा मिले, है ना, समान अवसर मिले, सबको पढ़ने का हक है, सबको आगे बढ़ने का हक है। तो इसीलिए किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसीलिए हमारे स्कूल के जो आप जो पहनते हैं ना, वो ड्रेसेस भी हमारा जो है कि एक समान होता है, ताकि सभी बच्चे बराबर हैं, समान है। ठीक है, और अगर हम आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो इसका अर्थ है आर्थिक असमानता को कम करना। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित साधन और समान अवसर मिलना चाहिए। जो जिस हिसाब से जो काम कर सकता है वो कर सकता है, उसको पैसा कमाने का, मेहनत करने का, अपना जीविका चलाने का अधिकार है, है ना। न्याय किसी भी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक, हमारा देश तो लोकतांत्रिक है, व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है, है ना। न्याय का उद्देश्य यह निश्चित करता है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार ना हो और एक समतापूर्ण व्यवस्थित समाज का निर्माण हो। हम सभी साथ रहें, खुश रहें, एक दूसरे से कोई भेदभाव ना रखें। ठीक है, हमने क्या जाना आज,
विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर हमने जाना कि न्याय क्या है, ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है, ताकि आप स्कूल में सबके साथ किसी के साथ भेदभाव ना करो, है ना, सबके साथ दोस्ती करनी, एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, सब साथ चलना है, ठीक है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: नई राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो तो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में ना परिस्थिति सब वापस को रुड़ना
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
3: चलिए हम जानकारी लेते हैं मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखभाल की आवश्यकता होती है, देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत इन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहाँ बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों की सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचनार्थ जारी। बच्चों आज एक मजेदार बात बताती हूँ आपको। आज 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस भी है। इमोजी क्या है? इमोजी छोटे डिजिटल आइकॉन होते हैं जिसका उपयोग मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इमोजी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है। यहाँ ई का अर्थ चित्र और मोजी का अर्थ अक्षर होता है। दुनिया के पहले 176 इमोजी 1999 में जापान के सिगेताका कुरिता ने बनाए थे। आप इमोजी किसी को भेजते हैं, है ना? तो जिस तरह से आप उसको इमोजी भेजते हैं वो भी आपको उसका जवाब देते हैं। आप लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ओके लिखते हैं। उस तरह का हर किसी का होता है, हर किसी का अलग अलग चित्र होता है। वो एक आपके भावनाओं को, आपके शब्दों को व्यक्त करने का वो एक फोटो होता है जिसको आप भेजते हैं, उसको बोला जाता है इमोजी। चलिए इसके इतिहास की हम बात करते हैं। आज हम यूज तो करते हैं, काम में लाते हैं, लेकिन इसके इतिहास के बारे में जाने तो और अच्छा रहेगा। 1990 के दशक की बात है बच्चों। जापान में मोबाइल पर ईमेल और पेपर में 200 शब्दों की सीमा थी। अपनी बात को कम शब्दों और चित्रों में बेहतर ढंग से कहने के लिए सिगेताका कुरिता ने छोटे पिक्सल वाले आइकॉन डिज़ाइन किए, 12x12, है ना, 12x12 का इमोटिकॉन से। जैसे 1982 में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक स्कॉट फाइलमैन की ने कीबोर्ड के अक्षरों जैसे जो हम बता जैसे हम डॉट देते हैं या खुशी जाहिर करते हैं शुरुआत में, है ना, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो यह इमोजी का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, जैसे हम डॉट डॉट करके हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से 2010 में इमोजी को यूनिकोड मानक में शामिल किया गया, जिसके बाद ये दुनिया के सभी स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर इस्तेमाल होने लगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पहली बार इमोजी खुशी के आंसू वाला जो चेहरा होता है ना, को वर्ड ऑफ द ईयर चुना। कब की बात है ये? 2015 की बात है। तो सिगेताका कुरिते के मूल सेट के पहले रिलीज होने की याद में हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप इमोजी काम में लाते हैं जब आप किसी को मैसेज करते हैं, किसी को कुछ कहना चाहते हैं, उसमें अभिव्यक्त करते हैं, भेजते हैं, तो उसका इतिहास भी आपको जानकारी में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इन जानकारियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक काम करते हैं, एक कविता, प्यारा सा कविता सुनते हैं। ठीक है,
4: आप सभी के समक्ष कवि हृदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी रचित प्रसिद्ध कविता दुनिया का इतिहास पूछता का सस्वर पाठ करने जा रहा हूँ। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा, शश्वत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, शश्वत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जबके मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, जबके मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।

इसी के साथ आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजलि दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

0: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के मुरी और पिस्का समेत देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों का किया वर्चुअल लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कृषि विभाग की उच्च स्तरीय बैठक, आधुनिक कृषि का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश। राज्य के उद्योग सचिव ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स में झारखंड पवेलियन का किया दौरा। पारंपरिक उत्पादों और तसर सिल्क को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर बल। रांची में पेंशन समावेशन के लिए एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर बल। और हॉकी इंडिया ने महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन, सलीमा टेटे संभालेंगी टीम की कमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: नए भारत की आधुनिक अवसंरचना में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया है। इनमें झारखंड के मोरी और पिस्का स्टेशनों को लगभग 10-10 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बनाया गया है। अब यहाँ यात्रियों को लिफ्ट, एस्केलेटर, भव्य वेटिंग रूम और दिव्यांगों के अनुकूल विशेष सुविधाएं मिलेंगी। बदलते स्टेशन और बेहतर सफर की यह तस्वीर विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से मैं पूनम करकेटा।
0: मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है।
2: जो भारतीय रेल है, एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं।
0: राज्यपाल संतोष

0: कुमार गंगवार, परिवहन मंत्री दीपक बिरवा और अन्य गणमान्य लोगों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने इस पुनर्विकास को राज्य के विकास में एक मील का पत्थर बताया।
1: अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये पुनर्विकसित पिस्का एवं मुरी रेल स्टेशन का उद्घाटन झारखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये योजना केवल रेल स्टेशनों के पुनर्विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सांस्कृतिक बराबर जोड़ने का एक दूरदर्शी प्रयास है।
0: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिवसीय कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को गरिमा और बिना किसी भय के काम करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मानसून की स्थिति, सिंचाई परियोजनाओं और किसान समृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कौशल विकास मिशन सोसाइटी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कथित फर्जी बैंक गारंटी मामले की न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 के समापन पर उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने झारखंड पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तसर सिल्क और जनजातीय हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इस आयोजन से स्थानीय बुनकरों और महिला उद्यमियों को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 19 जुलाई को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के उच्च स्तरीय बैठक की है। लोहरदगा और साहिबगंज जिला प्रशासनों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची में पेंशन समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज NPS संचय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और PFRDA के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन योजना से जोड़ने पर बल दिया।
2: हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। उसमें पेंशन सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और वो पेंशन सोसाइटी तब तक नहीं बनेगी जब तक इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए लोग सबके पास उनके पास पेंशन ना हो। उसी को इंश्योर करने के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं NPS संचय। NPS संचय एक ऐसी योजना है जिसमें 18 से 85 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। मिनिमम 250 रुपए से खाता खुल सकता है।
0: गढ़वा जिले में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शत प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्र ने बताया कि 8,62,000 से अधिक प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। प्रशासन का लक्ष्य 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन करना है। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने काम में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह संवेदकों को डिबार करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 20 जुलाई को विशेष बैठक बुलाई है। रांची के गैलेक्सी मॉल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को आज ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूचना

रामगढ़ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हॉकी इंडिया ने अगस्त में होने वाली महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जबकि सिमडेगा की सलीमा टेटे टीम की कप्तान चुनी गई हैं। टीम में निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी शामिल है। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित केरकेट्टा ऑडिटोरियम में कल पूर्वाहन 10 बजे 135वें दुरंड कप 2026 के ट्रॉफी शोकेस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के मुरी और पिस्का समेत देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों का किया वर्चुअल लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कृषि विभाग की उच्च स्तरीय बैठक, आधुनिक कृषि का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश। राज्य के उद्योग सचिव ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स में झारखंड पवेलियन का किया दौरा, पारंपरिक उत्पादों और तसर सिल्क को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर बल। रांची में पेंशन समावेशन के लिए एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर बल। और हॉकी इंडिया ने महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की, झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन, सलीमा टेट्टे संभालेंगी टीम की कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिमडेगा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कंचन सिंह और पदाधिकारी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दे रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि
2: सिमडेगा जिले में काफी जोर शोर से तैयार का काम प्रगति पर है और जिले के लगभग 62% मतदाताओं का जो इनमिनेशन फॉर्म है वो डिजिटाइज भी किया जा चुका है।

0: बाकी मतदाताओं से भी अपील है कि वो जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर करके अपने बीएलओ को दे दें और यथाशीघ्र अपना फॉर्म डिजिटाइज करा दें। इस कार्य को गति देने के लिए हमारे जितने भी बीएलओ हैं वो आपके घर घर जाएंगे और जिनका भी एनिमेशन फॉर्म नहीं अभी तक कलेक्ट हो पाया हो भरा हुआ उनसे वो फॉर्म लेकर के डिजिटाइज करने का काम करेंगे। तो सभी लोग अपने घरों में रहें और जो बीएलओ जाएं तो उन्हें कृपा करके एनिमेशन फॉर्म अपने हस्ताक्षर के साथ लौटा दें ताकि जो बाकी बचे मतदाता है उनका भी डिजिटाइजेशन हो सके और जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल है उस पर उनका नाम दर्ज किया जाना सुनिश्चित।
1: भाई और बहन के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी भागीदारी निभाते हुए डाक विभाग ने राखी भेजने के लिए एक विशेष लिफाफा उपलब्ध कराया है। सिमडेगा के मुख्य डाकघर में सजाए गए काउंटर में 10 रुपए में इस लिफाफे की बिक्री की जा रही है। मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर विजय चौधरी ने बताया कि
2: डाक विभाग सिमडेगा मुख्य डाकघर की ओर से राखी के शुभ अवसर पर सभी बहनों को संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक डाकघर में राखी के लिए लिफाफ बेचा जा रहा है जो वाटरप्रूफ लिफाफ है। लिफाफ की कीमत लगभग 10 रुपया है और इसके रजिस्ट्री चार्ज 55 रुपया है। कुल मिलाकर 65 से 70 रुपयों में आपके भाइयों की कलाइयों तक डाक विभाग के द्वारा राखी पहुंचा दी जाएगी। दूसरी बात है कि इसके राखी के अवसर पर एक डाक विभाग प्रतियोगिता रखा गया है प्रत्येक स्कूल में। जो प्रतिभागी अच्छे राखी का प्रदर्शन करेंगे उसे डाक विभाग द्वारा दिया जाएगा।
1: सिमडेगा जिले में कई उत्साही युवा श्री हनुमान वाटिका युवा संगठन और बजरंग दल के बैनर तले गौ सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल गोवंश की सेवा कर ये युवा समाज के सामने प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री हनुमान वाटिका के मुख्य पुजारी सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि
3: मेरा नाम सोमनाथ मिश्रा है, मैं इस हनुमान वाटिका मंदिर का पुजारी हूँ। इस मंदिर से बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सिमडेगा में कहीं पर भी अगर किसी गौ माता गौवंशी पशुओं का किसी सड़क दुर्घटना में मतलब कोई चोट लग जाता है, कोई घायल हो जाती है या फिर कोई बीमार पशु होते हैं तो उन गौ माता को गौवंशीय पशुओं को इस मंदिर परिसर में लाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा और मंदिर के पुरोहित श्री जगदीश मिश्रा श्री मणि मिश्रा और हम लोगों के सहयोग से उनका उचित उपचार इलाज किया जाता है। अब तक इस परिसर में करीब 60-70 गौवंशीय पशुओं गौ माताओं का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है और आगे भी हम लोग जो है इस क्रम को बनाए रखेंगे और गौ माता के संरक्षण के लिए और उनके साथ जो हो रही दुर्घटनाएं उन पे लगाम लगे इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे।
1: सिमडेगा जिले में रथ यात्रा धूमधाम से मनाई गई। जिले भर में 18 स्थानों में रथ यात्रा का आयोजन कर भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को मौसीवाड़ी तक ले जाया गया। मनोज कुमार सिन्हा मनु आकाशवाणी समाचार सिमडेगा।
4: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

सुन रहे थे कार्यक्रम जिले में आजकल, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आदिवासी अखाड़ा। आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे हो भाई।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारी रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:17 हो रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है आशिकी 2। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत है और मिथुन के बोल हैं, संगीत भी मिथुन का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सन्नी मधुर। सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरे, सुरुमानी मुंडरे, हीरामानी मुंडरे, सिद्धेश्वर मुंडरे, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरे, जानम सिंह मुंडरे, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफएम शिवा मुंडरे। दुर्गाई सेलू से चंदूर कुलकर्णी, हेमलता पारवनी से सीआर कुलकर्णी। चलिए, इन सब की फरमाइश पर आपको हम सुनवाते हैं फिल्म का नाम है आशिकी 2 का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम सुनवाते हैं आपको, फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तू। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। न्यू कॉलोनी टुंगरी से सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी, सुमित, प्रियंका, आर के पाठक, अनीता मिश्रा, रिया और प्रिया पाठक। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। चलिए आपको हम सुनवाते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है बाजीगर। अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजें हैं, गौहर कानपुरी के बोल और संगीत है अनु मलिक का। इस गीत को सुनना चाहते हैं बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सफा सेरे। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। मछली गोदाम कैडी मुड़ा रायगढ़ से, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लियू रितु सिंह, ऋषभ सिंह। चलिए, इन सबके फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजीगर का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से कार्यक्रम आपकी पसंद। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गुप्त का ये गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, विजू शाह का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं कोट रोड बागपत से यूसुफ आजाद वसीला, साहिद आजाद अंजुम नाज। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, असमा सायलिया, शोएब खान, पुत्रामो मुश्ताफा खान, राव भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से विनेश कुमार श्रीवास्तव और मुस्कान। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है विश्वात्मा। साधना सरगम की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है बीजू शाह का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, बड़ा नेमली चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और अमृत कुमार। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टीवानसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरती खेड़ा, लाडो खेड़ा खेड़ा, जीवन सी बुक और खेड़ा परिवार। कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम, इरफान मीना। चले इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो तो बेटा क्रांति बेसरा अले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ धारा बोले रुआ में अले परिवार से मतलब पूरे ये
3: मंगल गांव बारगड़ा आड़की थाना

0: जंगल गया है तो आऊ का कहा मना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
1: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हतो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
2: मुकुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है या पाप में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
3: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में उन्होंने ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल में
4: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया न तुम कहीं ना मिल आप ही लेता ना
5: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर ज...

0: స్వయం ఇది కట్టుబడి భారతీయ సేనా.
1: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है. आशा करती हूँ आपको सभी गीत पसंद आए होंगे. अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए. नमस्कार.

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीकंधा।

श्रोताओं इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा को लेकर मैं छवि आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फूल भुलैया के गीत से, केके की आवाज में। समीर के बोल हैं, प्रीतम का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, उमेर खंड महाराष्ट्र मेहरनगर से अभिजीत गुहानकर राही, श्रीमती सरिता गुहानकर, प्रिंस एकाश गुहानकर बहादुरा नागपुर आकार हाइट से, श्रीमती वैशाली शैलेश गुहानकर, श्वेता सुमित गुहानकर, कुमारी ध्वनि गुहानकर परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गुहानकर, प्रणीता गुहानकर, लाडला टुक टुक गुहानकर, छत्तीसगढ़ भाटापारा धनरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, विवेनिष्का और तन्मय गजभिये। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं भूल भुलैया फिल्म का ये गीत केके की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है बीवी नंबर वन। शंकर महादेवन और हेमा सरदेसाई की आवाज़ें हैं और इस गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट्रा से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जेतिंग बीरक और मीका बीरक। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। इन सब की फरमाइश पर आइए आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है बीवी नंबर वन।

श्रोताओं, आकाशवाणी से के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है बुलेट राजा। वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बेटी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल ढूमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज सवासेरे। छोटा निमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रीति कोमल, रोहन। आमराटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। चलिए, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बुलेट राजा का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है कूली नंबर वन, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और इस गीत को सुनना चाहते हैं स्टेशन गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा मोनिका शिवन मौसमी और संतोष आनंद। तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी लाडो, हरी खुशी कुमारी, रिया कुमारी और अर्पिता कुमारी। बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, नबीहा, मुस्कान और परी। चलिए, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है कूली नंबर वन।

श्रोताओं, अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है दिल्ली 6, रेखा भारद्वाज की आवाज़ में। चांडिल ग्राम हारूडी से सुनना चाहते हैं इस गीत को तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमहनी महतो और दीन बंधु महतो। गांव नारायणपुर आमदा से नायडू महतो, खेत्रो मोहन साहू, कैलाश बाबा, उषा महतो, प्रियंका महतो, प्रिया महतो, डोली महतो और तरुण महतो। महुलडिया सोनुआ से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अनु तनु, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक और किशोर महतो। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। चलिए, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल्ली 6 का ये गीत।

श्रोताओं, अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है धू। सुनीति चौहान की आवाज़ है और इस गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बापा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप और परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मेघलानी, सीमा, शाइना, निहाल, विशाल मेघलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, महावीर संधु, रमेश मेघलानी। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू भाई तड़वी, परु मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर पारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अर्षद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला मुरहादपुर से मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी और तैमू तड़वी, समस्त तड़वी परिवार। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनाते हैं धूम फिल्म का ये गीत।

lady.

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म का नाम है दिल चाहता है से गीत शंकर महादेवन की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं न्यू कॉलोनी टुंगरी चाईबासा से प्रकाश कुमार जायसवाल, उदित जायसवाल और अन्नपूर्णा देवी, सेंट टोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी नताशा और विनोद कुमार पवन और मीना पवन, गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप।

अभिषेक गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विक्की गोप, राजू गोप, विनोद गोप, गीता गोप, रीता देवी, सुनीता देवी और अनामिका कुमारी। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। आशा करती हूँ सभी गीत आपको पसंद आए होंगे। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM की 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहाँ से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress." He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
5: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
1: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ

0: Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of the monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. And Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीराजम ने जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीराजम ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के तीन रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। मायानाज वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। और भारत ने अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड में मुनक्द होने वाले FIH खवातीन की हॉकी आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिर सहूलतों में इजाफा करना और खित्ते में माशी तरक्की को फरोग देना है। वजीराजम ने आज शाम जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने तजीन नौ किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जालंधर कैंट स्टेशन भी शामिल है। जालंधर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीराजम मोदी ने कहा कि भारत के हर शहरी की खिदमत करना, उनकी जिंदगियों को आसान बनाना और उन्हें तरक्की के नए मौके फराहम करना मरकज की एनडीए हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि ये एनडीए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर कुंबा, चाहे वो गरीब हो या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता हो, उसे बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें और हुकूमत के कामकाज में नागरिक देवोभव के जज्बे की अक्कासी हो।
2: हम नागरिक देवोभव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवोभव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: वजीराजम ने कहा कि ये रेलवे स्टेशन सभी जदीद सहूलतों से लैस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन स्टेशनों की कायापलट का प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन तजीनो प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है।
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: वजीराजम ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे और इत्तेलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। वजीराजम मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और 6 लेन वाले जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संग बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम महफिल।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। आज आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह, कमाल खान, शंकर महादेवन, साजिया मंजूर, विभा शर्मा और जयश्री शिवम और उदित नारायण की आवाज़ों में चंद गजलें। तो सभी आप तैयार हैं ना गजल सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस गजल से।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाई बसा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम शुरू किरण सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर का। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, अगला गीत हम सुनवाते हैं आपको। फिल्म का नाम है दिल कितना नादान है। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। राहत इंदौरी के बोल और संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरु किरण। अब आपको सुनाते हैं फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में।

0: ना कहेंगे हम
1: मोहब्बत की कसम
0: मोहब्बत की कसम
1: मोहब्बत की कसम।

0: जाता है प्यार। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम।
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम।

किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार, है दिल की मुरादें कोई पा गया।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तुझको दिया का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप हिंदी और अंग्रेजी
1: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।